घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं। प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। सावन प्रभात की इस पुण्य वेला में मॉरिसस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत और इस कार्यक्रम में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रोताओं, भगवान सदाशिव जिनको हम पशुपति भी कहते हैं, इनकी उपासना और आप कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि मध्यांकार्कसमप्रभं शशिधरं भीमाट्टहासोज्ज्वलं त्यक्षं पन्नगभूषणं शिखिशिखास्मश्रुस्फूर्मूर्धजम् हस्ताब्जैर् त्रिशिखं समुद्र रमसिं शक्तिं दधानं विभुं द्रष्टा भीमचतुर्मुखं पशुपतिं दिव्यास्त्ररूपं स्मरेत्। जिनकी प्रभा मध्यान्न कालीन सूर्य के समान दिव्य रूपों में भासित हो रही है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जिनका मुखमंडल प्रचंड अट्टहास से उद्भासित हो रहा है, अरे सर्प ही जिनके आभूषण हैं, तथा चंद्रमा सूर्य और अग्नि ये तीन जिनके तीन नेत्रों के रूप में अवस्थित हैं, जिनकी दाढ़ी और सिर की जटाएं चित्र विचित्र रंग के मोर पंख के समान स्फुरित हो रही हैं, जिन्होंने अपने करकमलों में त्रिशूल मुद्गर तलवार और शक्ति को धारण कर रखा है, और जिनके चार मुख तथा दाढ़े हैं, ऐसे सर्वसमर्थ दिव्य रूप एवं अस्त्रों को धारण करने वाले पशुपति भगवान का हम

ध्यान करते हैं। नमः शिवाय शांताय वेद वेदांग रूपिणे यज्ञानां फलदात्रे च ज्योतिर्लिंगायते नमः। नमः शिवाय, ऐसे पंचाक्षर मंत्र से और निरंतर जिनकी उपासना की जाती है, निरंतर आप ओम नमः शिवाय मंत्र से और भगवान शिव की अर्चना करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भगवान सदाशिव और आपका कल्याण करते ही हैं, निश्चित रूप से कल्याण करते हैं, क्योंकि भगवान शिव कल्याण के देवता हैं। भगवान शिव के अनेकानेक नाम हैं श्रोताओं, जिनको हम महामृत्युंजय भी कहते हैं, जो मृत्यु के समान और होने वाली पीड़ा से मनुष्य को मुक्त दिलाते हैं। ऐसे भगवान महामृत्युंजय, जिनके लिए वेदों में ओम

0: मां अमृतात्, ऐसे और मंत्र से भगवान शिव की उपासना जो लोग करते हैं निश्चय ही उनके मृत्यु के समान कष्ट भी दूर हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। अतः एव जब केवल एक जन्म के लिए सती का त्याग हो गया, तब सती को अपनी करनी पर अत्यंत पश्चाताप हुआ और उन्होंने भी उन्हीं परम प्रभु श्री रघुनाथ जी की हृदय से प्रतिपत्ति ली और कहा कि हे आरती हरणी, हे दीन दयाल, मेरा यह शरीर शीघ्र छूट जाए जिससे मैं दुख सागर को पार कर पुनः भगवान शिव जी को प्राप्त कर सकूं। कहीं न जाय कछु हृदय गलानी,

दुहन विपति बड़ाए। भगवत कृपा से योग गण गया और अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर योग

नग में शरीर को त्याग कर सती ने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म धारण कर भगवान शिव को पुनः पति स्वरूप में प्राप्त कर लिया।

0: इस प्रकार भगवान शिव जी ने जो बिना अधके ही केवल सीता का वेश धारण करने के अपराध पर सती का त्याग कर दिया था, यह उनकी भक्ति की पराकाष्ठा थी। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
2: हरि ओम तत्सत् वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानामश्च कर्तारो वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्यां वीना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरम्। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री राम दूताय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। संडे 16 अगस्त के श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ। कल बालकांड दोहा संख्या 55 पर हम लोगों ने विराम लिया था। सती माता शिव जी के पास पहुंची और भगवान शिव ने स्पष्ट रूप से सती माता से कहे कि सारा वृतांत जो है वह सच सच कहे। अब जगदम्बा झूठ तो नहीं बोलेगी, लेकिन यदि भगवान शिव ऐसा कह रहे हैं कहहु सत्य सब बाता, तो माने भगवान अंतर्यामी शंकर उनको लगा ही कि शायद सती माता पूरी बात जो है सही सही ना बताए। इसे तुलसीदास जी के शब्दों में भगवान शिव सती माता से कहते हैं कि कहहु सत्य सब बात, आप सच सच कहो कि राम की परीक्षा कैसे दिया। तुलसीदास जी आगे बढ़ाते हुए कहते हैं आज हम दोहा संख्या 56 में प्रवेश कर रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं,

सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और सती माता भगवान शिव से कहे कि हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं लिया, वहां जाकर आप ही की तरह प्रणाम किया।

0: वहां झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और माता सती ने जो चरित्र किया था सब भगवान शिव को देखने को मिला और शंकर भगवान समझ गए कि सती माता ने झूठ कहे हैं। आज इसको यही विराम दूं आपके ध्यान के लिए। बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु, साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: सहारा।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
2: ओम आयुर्यज्ञेन कल्पताम प्राणो यज्ञेन कल्पताम चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम श्रोत्रम यज्ञेन कल्पताम पृष्ठम यज्ञेन कल्पताम यज्ञो यज्ञेन कल्पताम। ओम। आर्य सभा मॉरिशस के पुरोहित रामसुंदर शोभन का सादर सप्रेम नमस्ते और सुप्रभातम। श्रावण मास के संदर्भ में वेद का पढ़ना पढ़ाना और यज्ञ करना और कराना होता है। यज्ञम क्या है? प्रिय श्रोतागण, शास्त्र में लिखा है, यज्ञवाई ब्रह्म यज्ञो भुवनस्य नाभिहि यज्ञवाई श्रेष्ठतः कर्म। ये सब शास्त्रीय नाम है जिनमें अनेक प्रकार का संदेश भरे पड़े हैं। यज्ञ का अर्थ इस प्रकार हवन पूजन युक्त एक वैदिक कर्म है या एक धार्मिक कृत्य भी है, ऐसा सभी लोग मानते हैं। यज्ञ ही वह कर्म है जिसमें चार पुरुषार्थ पाए जाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। यज्ञ शब्द में चार अक्षर पाए जाते हैं, ई अ ज और य। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि वह इन चार पुरुषार्थों को अपने जीवन में प्रयोग में लाए। यज्ञ के चार अक्षरों में उसकी सार्थकता पाई जाती है। यज्ञ क्या है? यज्ञ धार्मिक सामाजिक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कर्म है। प्रिय श्रोतागण, यज्ञ में धार्मिकता यजमान यज्ञ को संपन्न करता है। इसमें तीन मुख्य बातें स्वयमेव आ जाती हैं, संगतिकरण दान और पूजा। संगतिकरण में मिलन प्रेम ऐक्य भाव उपस्थित हो जाते हैं। यज्ञ परिवार के सदस्यों को एक सुंदर गुच्छे में बांध देता है। बड़ी ही प्रेम भाव से बैठकर यज्ञ को संपन्न करते हैं। प्रिय श्रोतागण, संगतिकरण केवल यजमान में ही नहीं होता। सामग्री को मिलाते हैं, वैसे होम में चार प्रकार के द्रव्यों का मिश्रण होता है। सुगंध फैलाने के लिए इलायची जायफल और केसर आदि का प्रयोग होता है। घृत दूध फल चावल गेहूं आदि अन्नों से पुष्ट करने की शक्तियां होती हैं। मिष्ट जिसमें शक्कर शहद ये सब होते हैं, गिलोय तुलसी के पत्ते आम के पत्ते रोग विनाशक शक्ति रखते हैं। इन सब द्रव्यों को मिलाने से ही शक्तिशाली सामग्री बनती है और वातावरण को शुद्ध करती हुई यजमान की भावनाओं को पवित्र भी करती है। प्रज्वलित अग्नि में स्वाहाकार की गुंजन करते हुए सामग्रियों को एक साथ आहूत करते हैं। सभी के एक साथ जलने से ही पवित्रता और शक्ति बढ़ती है। यज्ञ हमें संग में रहने का पवित्र ज्ञान देता है। यज्ञ में संगतिकरण और एकीकरण का यही संबंध है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना, ओम शांति शांति शांति।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: गहलोत राजपूत महासभा की ओर से प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में पंडिता सुनीति देवी प्रसाद मुगल का सादर से प्रेम नमस्ते और इस वेद मास के संदर्भ में प्रस्तुत है मंत्र व्याख्या। ओम यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्यः ब्रह्म राजन्यभ्याम शुद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय। यजुर्वेद अध्याय 26 मंत्र 2। अर्थात परमेश्वर ने विश्व के प्रारंभ में चार ऋषियों अर्थात अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा के माध्यम से ज्ञान मुक्ताओं से सज्जित चार वेदों ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद का जाति वर्ण और स्तर पर ध्यान दिए बिना मानव जाति हेतु उजागर किया था। इस वेद मंत्र में ईश्वर ने स्वयं घोषित किया है, मैं अपनी इस हितकार वाणी अर्थात वेदों को समस्त मानव मात्र को संबोधित करता हूँ, चाहे वे ब्राह्मण हो, पुजारी हो अथवा संस्कृत तथा वेद मंत्रों के अध्यापन में रत अध्यापक हो, चाहे वे युद्ध क्रिया में लगे क्षत्रिय योद्धा हो, चाहे वे वाणिज्यक तथा कृषि कार्यों में रत वैश्य व्यापारी हो, चाहे वे श्रमजीवी शूद्र श्रमिक हो, चाहे वे बंधु बांधव हो तथा चाहे वे बाह्य व्यक्ति हो। इस प्रकार उक्त ईश्वरीय उद्घोषणा के अनुसार किसी भी पुरुष अथवा स्त्री को वेदों के अनुशीलन से वंचित नहीं किया गया है। वेद विश्व बंधुत्व तथा स्नेह की शिक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि वेदों का प्रकटीकरण समस्त मानव के कल्याण के लिए हुआ है। अतः जो व्यक्ति वेदों के अध्ययन को तथा कथित उच्च वर्णों तक सीमित करने की बात करते हैं तथा दलित वर्गों को उनके अध्ययन से अथवा उनके पाठ का श्रवण करने से वंचित करते हैं, वे इस दैवी आदेश की अवहेलना करते हैं तथा वे इस प्रकार पाप करते हैं। वेदों का संबंध देश अथवा संप्रदाय से नहीं है। पावन वेद तो समस्त विश्व की मानव जाति की अनुपम अमर धरोहर है। वेदों से उत्पन्न होने वाला दिव्य ज्ञान सर्वजनीन सर्वभौमिक तथा सार्वकालिक है। यह ज्ञान सर्वदा नवीन उपयुक्त प्रवाहमान है। यह काल स्थान या कार्य की सीमाओं से परे है। यह ज्ञान विश्व व्यापी चिरस्थाई है तथा नित्य है। ओम शांति शांति शांति।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ओम द्रिते दृंह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे।
2: संसार के सभी प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें, मेरे प्रति किसी के मन में वैर भाव या शत्रुता न हो। मैं भी संसार के सभी प्राणियों को मित्र भाव से देखूं, मेरे भीतर किसी भी जीव के प्रति द्वेष न रहे। परस्पर एक दूसरे को मित्रता के दृष्टि से देखें, पूरा मानव समाज आपस में मिलजुल कर रहें और चारों ओर सुख शांति का वातावरण बने रहें। वही मनुष्य सच्चे अर्थों में धर्मात्मा है जो अपनी आत्मा के समान ही अन्य सभी जीवित प्राणियों को समझता है, किसी से द्वेष नहीं करता और हमेशा सबके साथ यथा योग्य व्यवहार करता है।
1: ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
2: परमात्मा त्रयंबक स्वरूप है, वह भूत भविष्य और वर्तमान को जानता है। सृष्टि की रचना पालन और संहार करना उसी का स्वाभाविक कर्म है, इसी कारण वह त्रयंबक या शक्ति त्रय कहलाता है। यज्ञ योग साधना द्वारा वह त्रयंबक परमेश्वर की हम विधिवत उपासना करें, जिससे कि हम मनुष्य मृत्यु के बंधन से छूटकर उसी प्रकार मोक्ष को प्राप्त कर सकें जैसे खरबूजा परिपक्व और सुगंधित होने पर अपनी लता से अलग हो जाता है। हे ईश्वर, मुझे भी मृत्यु रूपी लता से अलग करके मोक्ष रूपी फल प्रदान करें।
1: ओम तचक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्ये।

0: यश्च शरदः शतात्।
1: वह परमेश्वर जो सबको देख रहा है और ज्ञान स्वरूप है, वह धार्मिक विद्वान, देवों और महात्माओं का परम हित करने वाला और सबका मार्ग प्रशस्त करता है। सृष्टि के पूर्व, सृष्टि के मध्य और सृष्टि के अंत में सर्वत्र शुद्ध प्रकाशमान और सत्य स्वरूप में विद्यमान रहता है। वह परमेश्वर हम सबको 100 शरद ऋतुओं तक अर्थात 100 वर्षों तक उत्तम दृष्टि प्रदान करें। हम 100 वर्षों तक स्वस्थ आँखों से देखें, 100 वर्षों तक जीवन को धारण करें, 100 वर्षों तक कल्याणकारी वचनों को सुनते रहें, 100 वर्षों तक सत्य उपदेश करते रहें, अपनी वाणी का सही उपयोग करते रहें, 100 वर्षों तक किसी के अधीन न

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम आशिता के साथ है संध्या। नमस्कार आपको आशिता।
1: नमस्कार रिया। 16 अगस्त 2026 की इस प्रातकालीन समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सभी को प्रणाम और नमस्ते। सबसे पहले हम स्थानीय खबरों के बारे में बात करते हैं। भारत के 80वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय तिरंगा शान से लहराया गया। कल मॉरिशस में भारतीय उच्चायोग की ओर से आयोजित समारोह में गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम सहित मॉरिशस के राजनीतिक व राष्ट्रसभा के सदस्यों ने एक रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया। यह अवसर रहा भारत मॉरिशस के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने तथा मनाने का। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम आज रविवार को दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होंगे। वे सोमवार को होने वाले सादेक के 46वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां क्षेत्रीय एकीकरण और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। मॉरिशस ने मछली पकड़ने वाले जहाजों की निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला लिया है। अवैध और अनियमित मछली पकड़ने पर रोक लगाने के लिए जहाज निगरानी प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया गया है। मॉरिशस में स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड और फूड एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट यानी फारे के विलय का किसानों के प्रतिनिधियों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि इस फैसले से करीब 84,000 छोटे किसान, पशुपालक और उनके परिवार सीधे प्रभावित हो सकते हैं। पाई से वालेपीतियों को जोड़ने वाली बस लाइन रूट 150 की सेवा को लेकर 500 निवासियों के एक समूह ने शिकायतें दर्ज कराई हैं। निवासियों का आरोप है कि समय सारिणी का पालन नहीं हो रहा है और पर्याप्त बसें उपलब्ध नहीं हैं, जिससे कर्मचारी, विद्यार्थी और बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं। और मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस साल अपनी स्थापना के 40 वर्ष पूरे कर रहा है। इस अवसर पर स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और मॉरिशस में विदेशी फिल्म निर्माण को आकर्षित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से कम 47 लोगों की मौत हो गई है और फ्लोरेस टापू में आए भूकंप के बाद कई झटके महसूस किए गए और सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा है।

0: उधर दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। लेबनानी अधिकारियों के अनुसार मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि इजरायल ने हमले में हिजबुल्लाह के एक कमांडर को निशाना बनाने की बात कही है। तो इसके साथ ये संक्षिप्त समाचार समाप्त हो, चला बढ़ते हैं अब हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर। आम हालत हमारे इलाके पर सामान्य हवा का बहाव है। आज पूर्व की ओर से आने वाले बादल आज शाम से हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आमतौर पर सुबह के समय और दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा, सिवाय देर दोपहर में पूर्व में कुछ बादल विकसित होंगे और रह रहकर वर्षा होगी। शाम के समय और रात के दौरान बादल घिराएंगे और पूर्वी तथा दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों वाले इलाकों पर वर्षा होगी। ऊंचाइयों पर विशेषकर कोहरा छाएगा और हवा सुबह के समय पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से हल्की बहेगी। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा दिन के दौरान बहेगी और खुली जगहों में झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा तथा दक्षिण पश्चिम की ओर से 3 मीटर 50 सेंटीमीटर की ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है तथा लगूनों में न निकलने की सलाह दी जाती है। दक्षिण और उत्तर के लगूनों में शाम के समय सुधार आएगा और तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा ऊंचाइयों पर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:31 पर और सूर्यास्त शाम 5:57 पर।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

सदकल्लाहु अज़ीम। मज़ीद सामीन, अभी आपने कुरान पाक की चंद आयात मुबारका की तिलावत समाअत की। परवरदिगार आलम से दुआ है कि वह हमें इन आयतों के सुनने का अजर सवाब अता करे और हमें सही तरीके से कुरान शरीफ पढ़ने की तौफीक अता करे, आमीन। पेश खिदमत है एक हम्द, आइए समाअत।

बच्चा पैदा होता तब भी वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब की वजह से उसका नाम मोहम्मद न रखते। एक दफ़ा एक सहाबी के घर में बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने मोहम्मद नाम रखा, लेकिन उनकी कौम ने कहा कि हम नए नाम रखने देंगे ना उस कुनियत से तुम्हें पुकारेंगे, तुम उसके मुतालिक ख़ुद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा कर लो। वो बच्चे को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए और ये पूरा वाक़या बयान किया तो आपने फरमाया कि मेरे नाम पे नाम रखो लेकिन मेरी कुन्नियत पे कुन्नियत मत रखो। ये हदीस किताबुल मुस्लिम, मुस्लिम शरीफ किताबुल आदाब बाबुन नहीं अन तकन्नी अबिल कासिम में है और बयान मा यस्तहिब्बु मिनल अस्मा, उसमें ये हदीस मौजूद है। रास्ते में कभी साथ हो जाते सहाबा तो अदब से आपके साथ सवारी पर सवार होना उन्हें गवारा ना होता। इंतहाई अदब से कभी हुजूर से पहले न बोलते, कभी आगे न जाते। ग़ज़वे तबूक के सफ़र में आप क़ज़ाए हाजत के लिए सहाबा से अलग हुए और नमाज फजर का वक्त आ गया तो सहाबा ने आपके आने से पहले ही अब्दुर्रहमान बिन औफ की इमामत में नमाज शुरू कर दी। आप पहुँचे तो एक रकात नमाज हो चुकी थी, इसलिए आप दूसरी रकात में शामिल हुए। नमाज हो गई तो तमाम सहाबा ने इसको बेअदबी बल्कि गुनाह तक ख्याल किया और सब के सब बतौर इस्तिग़फ़ार सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह कहने लगे। आप नमाज से फारिग हुए तो फरमाया तुमने अच्छा किया, तुमने अच्छा किया। ये अबू दाऊद शरीफ किताब उत्तहारा बाबुल मस्ह अलल खुफ़ैन में ये रिवायत मौजूद है। इतना अदब सहाबा किराम आपका करते। एक बार आप किसी झगड़े को हल करने के लिए कबीले बनू आमर बिन औफ में गए और नमाज का वक्त हो गया तो मुअज्जिन ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की खिदमत में अर्ज़ की कि नमाज आप पढ़ा दें। वो नमाज पढ़ा रहे थे कि आप शरीक जमात हुए, लोगों ने नमाजियों ने तालियां बजानी शुरू की। सिद्दीक़ अकबर अगरचे नमाज में किसी तरफ मुतवज्जे न होते ताहम लोगों की मुसलसल तालियां बजाने की वजह से मुड़कर देखा कि अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने इशारा किया कि अपनी जगह पर कायम रहो। उन्होंने पहले तो अल्लाह का शुक्र किया कि आपने इनकी इमामत को पसंद फरमाया, फिर पीछे हट आए। आपने बढ़कर आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई। नमाज से फारिग होकर फरमाया कि जब मैंने आपको हुक्म दिया तो तुम क्यों अपनी जगह से हट गए। बोले अबू कुहाफा का ये मुँह न था, अबू कुहाफा की ये मजाल न थी कि वह अल्लाह के हबीब के आगे नमाज पढ़ाए। अबू दाऊद शरीफ किताबुस्सला
باب التصفیق

0: इस सलाह में ये रिवायत तफसील से मौजूद है। एक बार आप पैदल जा रहे थे, इसी हाल में एक सहाबी दराज गोश पर सवार आए और आपको पैदल देखा तो इंतहाई अदब से पीछे हट गए और आपको आगे सवार करना चाहा, लेकिन आपने फरमाया कि तुम आगे बैठने के ज़्यादा मुस्तैक हो कि सवारी तुम्हारी है, हाँ अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो फिर मैं आगे बैठ सकता हूँ। इतना अदब सवारी में भी, ये भी अबू दाऊद शरीफ में है। इसी तरह अगर सहाबा किराम के साथ खाने का इत्तेफाक होता तो जब तक आप शुरू न फरमाते सहाबे किराम खाने में हाथ तक न डालते। अल्लाह पाक इस अदब का फैज़ इस उम्मत को अता फरमाए और इस उम्मत को अपनी मीरास अदब में से हज़्ज़े वाफ़िर अता फरमाए। वमा अलैना इल्ल बला।
1: अभी आपने जामी मस्जिद पोटलिस के खतीब मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ कादरी रज़वी दामर बरकातहुमुल आलिया का ये बयान सुना। अल्लाह अज़्ज़ोजल हमें उनकी बताई हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत इबन अबी मलिका रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला के दरमियान एक मामले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आवाज़ कदरे बुलंद हो गई। इसी मौके पर अल्लाह ताला ने एक आयत नाजिल फरमाई, ये उसका तर्जुमा है, ऐ ईमान वालों अपनी आवाज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद न करो और न उनसे इस तरह ऊंची आवाज़ में बात करो जैसे तुम एक दूसरे से करते हो। इस आयत के नुज़ूल के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करते तो इतनी आहिस्ता आवाज़ में बात करते कि कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे दोबारा पूछना पड़ता। ये वाक़या हमें बताता है कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने लहजे और आवाज़ तक का ख्याल रखते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी ने आयत नाजिल होने के बाद अपने अंदाज़ गुफ्तगू को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। इससे मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब सिर्फ दिल की कैफियत नहीं बल्कि ज़बान, लहजे और मजलिस के ज़ाहिरी आदाब का भी

हज़रत अरवा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने सुलह हुदैबिया के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु ताला का हाल अपनी आँखों से देखा। उन्होंने बयान किया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला वज़ू के बचे हुए पानी को हासिल करने के लिए एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हुक्म देते तो फौरन उस पर अमल करते, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगु करते तो अपनी आवाज़ें पस्त रखते, और अदब की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलसल टिकटिकी बांध कर न देखते। हज़रत अरवा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि मैंने कैसर, कसरा और नजाशी जैसे बादशाहों को भी देखा है, मगर किसी बादशाह को अपने दरबारियों में इतना मुअज़्ज़िज़ नहीं देखा जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सहाबा रज़ियल्लाहु ताला के दरमियान देखा। ये अदब महज़ ज़ाहिरी एहतराम नहीं था, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर कामिल यकीन का नतीजा था। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म को अपने लिए सआदत समझते थे। हज़रत अरवा रज़ियल्लाहु ताला सहाबा रज़ियल्लाहु ताला के इस बेमिसाल अदब को देखकर हैरान

हज़रत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत उबैदा रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल मुबारक हैं जो हमें हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला या उनके घर वालों की तरफ से मिले हैं। हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब दिया, अगर मेरे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बाल भी हो तो वो मेरे नज़दीक पूरी दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे ज़्यादा महबूब होगा। इसी तरह हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक मुंदवाया तो हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक हासिल करने वालों में थे। सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला के दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस कदर गहरी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली चीज़ भी उनके लिए दुनिया की तमाम नेमतों से ज़्यादा कीमती थी। ये मोहब्बत सहाबा रज़ियल्लाहु ताला के ईमान का हिस्सा थी और इसी मोहब्बत ने उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर मजबूती से कायम रखा। मोहतरम सामीन, हमें भी अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब अपने दिल में पैदा करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को मामूली बात समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के अदब से हमें अपनी गुफ्तगू का अदब सीखना चाहिए। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का ज़िक्र एहतराम से करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ अपनी ख्वाहिश को तरजीह नहीं देनी चाहिए। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला ने मोहब्बत को अमल के ज़रिए साबित किया था। हम भी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए साबित करें। अल्लाह ताला हमारे दिलों में सच्ची मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा फरमाए और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब और सुन्नत पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सामीन मुख्तरम, आइए सबा खैर प्रोग्राम के आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं। इंशाल्लाह समीर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। अभी के लिए हमें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: 94.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95 96.
1: Roger Sundaram from 7 a.m. to 8 a.m. Jainisayaranga.

0: Every Arjun Sundaram.
1: Your music, your request.

स्त्री में शक्ति। सभी श्रोताओं को हमारा सादर प्रणाम। कार्यक्रम है भक्ति में शक्ति। श्रोताओं, जहाँ विश्वास है वहाँ शिव का आशीर्वाद है, जहाँ प्रेम है वहाँ शिव का निवास है। तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, भक्ति में शक्ति। आप तमाम श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन हम कर रहे हैं, हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें। तो चलिए श्रोताओं, शिवमय वातावरण है, देश के चारों तरफ हम भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं, सावन मास का पावन महीना चल रहा है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत, सबसे पहले हम भगवान गणेश जी का नाम लेंगे।

श्रोताओं, भक्ति में शक्ति कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। वैसे पावन सावन में भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हम करते हैं, अपने भीतर प्रेम, सेवा और सकारात्मकता का दीप हम जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हर जीवन जो है सुख, शांति और मंगल से भर जाए। तो आइए, बहुत ही प्यारा सा गीत जो है आपके नाम हम कर रहे हैं आपके मनपसंद रेडियो चैनल पर।

0: श्रोताओं, जब हम सावन की बात कर रहे हैं तो सावन हमें प्रकृति के और भी करीब लाता है। हरियाली, बारिश की बूंदें और मिट्टी की सौंधी खुशबू हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति का सम्मान करना भी ईश्वर की सच्ची उपासना है, है ना?
1: शिव तांडव स्तोत्रम के रचयिता दशानन रावण हैं। इस प्रखर शिव भक्त ने तपश्चर्या और साधना के समय में की हुई शिव की आराधना तांडव स्वरूप में स्फुरित हुई। सर्जन और विसर्जन ये तो नियति है, आनंद और शोक यही जीवन है। इन दोनों अवस्थाओं को सम्यक स्थित प्रज्ञ दृष्टि भाव से हृदय में धारण करने वाले इष्ट तत्व ही शिव सर्वज्ञाता होने पर भी अभेद्य मौन कवच को धारण किए हुए भगवान शिव कभी जगत के कल्याण के कारण ही प्रलयंकर बनते हैं और वहीं सर्जन होता है। नाद ब्रह्म का प्रतिघोष भक्ति सभर भाव जगत में धूर जटी शिव महादेव की महिमा और नाद भैरव का नर्तन, इन त्रितत्वों की मिलन त्रिवेणी ही ये हृदयंगम शिव तांडव स्तोत्रम।

श्रोताओ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम है भक्ति में शक्ति। कहते हैं कि भगवान शिव हमें सादगी, धैर्य, करुणा और संतुलन का संदेश देते हैं। वे बताते हैं कि जीवन में परिस्थितियां कैसे भी हो, यदि मन शांत और विश्वास अधिक हो तो हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है।

श्रोताओ, सावन का महीना केवल वर्षा की फुहारों का मौसम नहीं बल्कि भगवान शिव की आराधना का पावन समय भी है। मान्यता है कि इस पूरे महीने सच्चे मन में अगर हम शिव की आराधना जो है श्रद्धापूर्वक करें, उनका स्मरण करें, पूजा और ओम नमः शिवाय का जाप करें तो मन में अपार शांति, जीवन को नई ऊर्जा और आत्मा को सकारात्मकता का अनुभव होता है। तो चलिए कार्यक्रम का समापन हम करते हैं। साथ निभाने के लिए धन्यवाद। हमारे तकनीकी सहायक कार्यों को धन्यवाद देंगे

偷得浮生半日闲，再来感受一段诗意绵长，请听仓央嘉措的情歌。

如果再回到从前，一曲幽兰情歌勾起往日思绪，一起来听。如果再回到从前。

如见一面，往事回味，万般思念。只愿不如见一面，海来安慕的不如见一面。

世事浮沉，唯有真情可贵。听众朋友，今天的周日慢歌就在歌曲《你最珍贵》中跟您告别了，谢谢收听。

0: ये सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। एक बार फिर आपसे अर्शिता नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय तिरंगा शान से लहराया गया। कल मॉरिशस में भारतीय उच्चायोग की ओर से आयोजित समारोह में गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुराम सहित मॉरिशस राजनीतिक व राष्ट्रसभा के सदस्यों ने एक रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया। ये अवसर रहा भारत मॉरिशस के बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने का और उसको मनाने का। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम आज रविवार को दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होंगे। वे सोमवार को होने वाले सादेक के 46वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहाँ क्षेत्रीय एकीकरण और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। मॉरिशस ने मछली पकड़ने वाले जहाजों की निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला

0: किया है। अवैध और अनियमित मछली पकड़ने पर रोक लगाने के लिए जहाज निगरानी प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। मॉरिशस में स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड और फूड एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट फारे के विलय यानी फ्यूजन का किसानों के प्रतिनिधियों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि इस फैसले से करीब 84,000 छोटे किसान, पशुपालक और उनके परिवार सीधे प्रभावित हो सकती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने से पहले हम आपको याद दिला देते हैं कि मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MFDC इस साल अपनी स्थापना के 40 वर्ष पूरे कर रहा है। इस अवसर पर स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और मॉरिशस में विदेशी फिल्म निर्माण को आकर्षित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिणी लेबनन में इसराइल हमलों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों के अनुसार जून में तनाव कम करने के उद्देश्य से समझौते की घोषणा के बाद ये हमलों के सबसे घातक दिनों में से एक हैं। लेबनन की प्रधानमंत्री नवाफ सलाम के अनुसार बेरूत से करीब 70 किलोमीटर दक्षिण में अंसार के बाहरी इलाके में एक मकान पर हुए हमले में 7 लोगों की मौत हुई। सरकारी मीडिया के मुताबिक मृतकों में 3 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। इसराइल रक्षा बलों ने कहा है कि उसने हिजबुल्ला के एक कमांडर को मार गिराया है। इसराइल के अनुसार ये कार्रवाई उसके सैनिकों पर हुए एक हमले के बाद की गई। IDF ने यह भी कहा कि कमांडर के परिवार के सदस्य, जिन्हें उसके मुताबिक वह मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, घटनास्थल पर मौजूद थे और वे भी प्रभावित हुए हैं। शनिवार को बाद में डेर अल जहरानी शहर पर एक और दौर के हमले हुए। लेबनन के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन हमलों में 4 लोगों की मौत हुई और 5 अन्य घायल हुए हैं। और उधर अमेरिका के मिडवेस्ट क्षेत्र में इस सप्ताह आए शक्तिशाली तूफानों के बाद इंडियाना में कम से कम 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। अधिकारियों के मुताबिक तूफानों ने क्षेत्र के कई राज्यों को प्रभावित किया। इंडियाना के गवर्नर माइक ब्राउन ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राज्य की ओर से की गई राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा की मांग को मंजूरी देंगे। इससे तूफान से प्रभावित लोगों और इलाकों के लिए संघीय सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रहिए, सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। अल्बाथ्रोस स्ट्रीट पॉइंट में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सैमावती गौरी रामनुत, जिन्हें राजकुमारी के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2:16 पर उनके घर पॉइंट हिसाब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिश्लियों के शमशान होम में ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:16 PM। 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री मुरेंद्रनाथ सिंह सोहन, जिन्हें सुनील के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 11 बजे लाशापेला दौन दुमुआ पुचित रविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदिगौत की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: हेलो जी, नमस्कार, आदाब, और बहुत ही प्यारी सी संडे दोपहर की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। प्रणाम है आप सभी को। आप सुन रहे हैं MBC RM Free रेडियो मनोरंजन, और मैं हूँ देविना, आपका म्यूजिक कंपेनियन। जहाँ आज है संडे का दिन 16 अगस्त 2026, 12:10 हुए हैं, और हर रविवार की तरह हम आ जाते हैं आपके घरों में दस्तक देने के लिए, बस प्यारे प्यारे गीतों के साथ। और आज का जो संडे है ना, देखा जाए तो कल के कंपैरिजन में कल कुछ वर्षा हो रही थी, आज मौसम सुहाना है, मगर कुछ कुछ ठंड बहुत है। हाँ, रास्ते पर आ रहे थे, ठंड है, अंदर भी कुछ ठंड है। बस ऐसे में गर्मा गर्म लंच दे रहे हैं, तो बस बोना पेची शुभाहार हो जाए तैयार, क्योंकि अगले जो 3 घंटे का सफ़र है हमारे साथ, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, आपका साथ देने आए हैं। बस संगीत की उस खूबसूरत दुनिया में खो जाना है, जहां हर गीत एक कहानी है, हर धुन एक एहसास है, और हर मुखर

दिल को मुस्कुराने की एक वजह देता है। तो यह है आपका अपना सुहाना सफर, जहां सफर में याद है, मंजिल है मुस्कान की और रास्ते हैं सुरीले गीतों के। तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, चाय या कॉफ़ी भी पी रहे हैं या फिर लंच का ले रहे हैं, और संडे को बनाइए एकदम फिल्मी, म्यूजिकल और मैजिकल। और कार्यक्रम की शुरुआत हमने कर दी है किशोरदा की आवाज़ में, साथ में थी आशा भोसले जी, और ये जो गाना है वो इज पिक्चराइज्ड ऑन द

परवीन बाबी। तो आपकी ही फरमाइशों को नज़र में रखते हुए हम आज परवीन भाभी पर पिक्चर आज कुछ गाने चलाने वाले हैं। आपके कुछ डेडिकेशंस हो, आपको परवीन बाबी के गाने पसंद हैं, वे पसंद हैं, आप भी उनकी फिल्म देखना, उनको उनकी जो मूवी थी लाजवाब थे ना, तो बस उन पर कुछ बातें करेंगे आपके साथ। 4028070 पर आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं, साथ ही 5250600 पर आप अपने मैसेजेस भेजिएगा। बस कुछ आपके पसंद के गाने, कुछ हमारे पसंद के गाने हो जाए ये जवानी जानने मन।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जहाँ गली गली में शोर है और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर आपका ही प्रोग्राम है सुहाना सफर। और आज है स्पेशल परवीन बाबी। और कितने दोस्त बहुत बहुत खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं उनको ऐसे गाने ही पसंद है, नाचने का मन करता है, खुश होने का मन करता है, क्योंकि संडे का दिन जब आता है ना तो सारे गम भुलाकर, सारे थकान भुलाकर आप बस रिलैक्स कीजिए। और अगर काम भी करना है ना तो बस ऐसे गाने सुनकर ना तो जैसे स्फूर्ति आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। और ये जो गाना था आपने सुना, मच गया शोर, यही इससे होली वाली फीलिंग्स आ गई है ना। हाँ जी, तो होली तो बहुत दूर है, तो ये जो गाना है हम स्पेशल डेडिकेट कर रहे हैं मोहताज ब्लॉन्श के नवीन भाई के लिए। और वैसे तो हमेशा वे दीवाने होते हैं आशा भोंसले जी की आवाज़ को लेकर, और साथ में इस तरह के गाने उनको बहुत पसंद है। तो नवीन भाई, होप कि आपने एंजॉय किया होगा, और बाकी जो गाने हैं वो भी आपके लिए ही है, क्योंकि सभी गाने आप भी पसंद कर आप पसंद करेंगे ज़रूर। और हमारे जो दोस्त हैं ना वे भी पसंद कर रहे हैं, कह रहे हैं हम ब्यूटीफुल एक्ट्रेस थी। हाँ जी, तो परवीन बाबी के बारे में और बात करने वाले हैं कुछ अन्य गाने के बाद। अभी के लिए जो गाना हम चलाने वाले हैं, दिल आखिर दिल है, और दिल आखिर दिल है ये वाला गाना नहीं चलाने वाले हैं, टाइटल सॉन्ग वाला। लता जी की आवाज़ में, सुरेश वाडकर साहब की आवाज़ में, जब से देखा है तुम्हें ऐसा लगता है मेरी, वाह क्या गाना है। तो बस इसको एंजॉय करते हैं, और इसको डेडिकेट करने वाले हैं लिस्पिरेंस त्रिबिशे के मनोज सोहन जी के लिए, साथ में प्यारे से वाइफ नजीमा जी के लिए, साथ में सभी सोहन परिवार के लिए, उनके जो बेटे हैं और बहू हैं बाहर आउट विदेश में हैं, गया सिंह आश्रम के जितने रेजिडेंस हैं, जितने बीमार लोग हैं, जितने उनके जो सहयोगी हैं, जितने लोग हमें सुन रहे हैं हालांकि फ़ोन नहीं कर रहे हैं बस, और स्पेशली हमारे लिए भी हैं कि मनोज जी बस इसको एंजॉय करते हैं। और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर सुहाना सफ़र प्रोग्राम।

0: Makamba. Makamba. Zumba. Zumba.
1: जुम्बा वुम्बा करेंगे वीकेंड में, कभी कुछ लोग जॉगिंग पर जाते हैं, कुछ लोग बैठे रहते हैं घर पर, क्या करें। आज संडे का दिन है, आप जैसा भी हो, जैसा भी चाहे आप, बस अपना संडे गुजार दीजिए। और जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं ना, तो उसका तो संडे टिप टॉप हो जाएगा। आई एम श्योर कि गाने ही ऐसे हैं ना, है ना। तो बस क्या शानदार म्यूजिकल जर्नी चल रही है। और दोस्तों, संडे को थोड़ा स्लो होना भी ज़रूरी है, क्योंकि मंडे की दौड़ शुरू होने से पहले आज दिल को थोड़ा आराम दीजिए ना। और कल मंडे से शुरू हो रहा है बैक टू स्कूल, बैक टू वर्क, टीचर्स एंड प्यूपल्स और मम्मीज भी, मम्मी और पापा भी सवेरे उठेंगे, नाश्ता बनाएंगे, बच्चों को तैयार करेंगे, काम पर जाएंगे, बस वही रूटीन फिर से शुरू। क्या करें, जिंदगी ही ऐसी है। सो सभी को बॉन कुराज। इससे आज बस मुस्कुराइए, अच्छा संगीत सुनिए, अपने लोगों के साथ समय बिताइए और ज़िंदगी के छोटे छोटे खूबसूरत पलों को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी लंबी नहीं, खूबसूरत होनी चाहिए। और वैसे राजेश खन्ना साहब ने क्या खूब कहा है फिल्म आनंद में, ज़िंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। और खूबसूरत बनाने के लिए म्यूज़िक से बेहतर साथी भला कौन हो सकता है। ट्रिब्यूट दे रहे हैं परवीन बाबी को, और उनके गाने तो सभी को पसंद हैं, और कितनी ग्लैमरस थी, ब्यूटीफुल थी। तो बस उन पर कुछ बातें होती रहेगी। अभी के लिए कुछ अलग सा गाना हम चलाने वाले हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि वीक डेज में आपकी फरमाइशें होती रहती हैं, पुराने पुराने गाने, सदाबहार गाने, और संडे को कुछ स्पेशल बनाते हैं, कुछ 70s 80s वाले गाने, और 2 बजे के बाद आप सुन पाएंगे 90s वाले गाने। अभी के लिए पीपल के पटुआ पर सुनी निगम साहब साथ में जसविंदर नरूला, फिल्म है सूर्य वंशम। इस गीत की मांग, इस गीत को सुनना चाह रहे हैं गौगोप के जयप्रकाश जी, साथ में हैं उनकी जो वाइफ नम्रता और उनके जो बेटे हैं केशव और युधिष, साथ में श्यामा जी, श्यामा रघुनंदन जी, गौगोप, ये गाना उन्होंने ये मांगा है। और हेलो, स्पेशल हेलो टू विजयंती जी, पंजाब में हैं अपने पति जसवंत सिंह के साथ और बच्चों के साथ। हाय हेलो आप सबों को, हम जानते हैं आउट ऑफ मॉरिशस बहुत लोग हमारा साथ देते हैं और एमफी रेडियो मनोरंजन सुनते रहते हैं, और होप कि आप सब लोग खुश हैं और खुश होते हैं हमें सुनकर। साथ में वीना रामफल, विश्वानी रुखी और नंदिनी ओकलू के लिए ये गाना।

जब तुम चले जाओगे याद बहुत आओगे, चलने का समय नहीं हुआ है मेरे दोस्त। 1 बजे आप समाचार सुन पाएंगे और इसके बाद हमारा प्रोग्राम जारी रखेंगे।

और जो अगला गाना है ना वो जाएगा स्पेशली फिल्म बुलेट का गाना है फुलवंती जी के लिए और वाकवा उनके पति देव के लिए, दो बच्चों के लिए, हमारे पूरी एमबीसी टीम के लिए. थैंक यू. साथ में जय श्री जी ऑफ सूरीनाम आपकी प्यारी माता जी के लिए.

0: आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार करुणा जी के साथ। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी को नमस्कार। 16 देश साझा चुनौतियों और हितों पर विचार विमर्श करने के लिए एकजुट होंगे। सादिक शिखर सम्मेलन सोमवार को दक्षिण अफ्रीका के डर्बन में शुरू होगा। ये क्षेत्रीय विकास के लिए एक महत्वपूर्ण और निर्णायक बैठक होगी। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी इसमें हिस्सा लेंगे। सैडेक सम्मेलन के साथ खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ठोस परिणाम की उम्मीद है। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय उच्चायोग द्वारा कल शाम थियानो कन्वेंशन सेंटर में एक स्वागत समारोह लगाया गया। गणराज्य के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी सहित कई गणमान्य अतिथि इसमें उपस्थित रहे। अपने संबोधन में भारतीय उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तवा ने कहा कि भारत और मॉरिशस के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का नेतृत्व आपसी विश्वास और समझ के उच्च स्तर पर आधारित है। उन्होंने शागोस के संरक्षित समुद्री क्षेत्र के विकास और निगरानी से जुड़े नए रणनीतिक साझेदारी समझौते का भी उल्लेख किया। अनुराग श्रीवास्तवा ने मॉरिशस के बंदरगाह के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन से संबंधित सहयोग का भी जिक्र किया। बेल्जियम अपने इतिहास की सबसे भीषण आग में से एक से जूझ रहा है। आग कई क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले रही है। 110 से अधिक दमकल कर्मी आग बुझाने के अभियान में जुटे हैं। रविवार सुबह हेलीकॉप्टर भी राहत और आग बुझाने के अभियान में सक्रिय रहे। लगभग 600 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

0: मिला 2700 हेक्टर से अधिक क्षेत्र जलकर खाक हो चुका है। और अमेरिका के इंडियाना राज्य में सप्ताह आई विनाशकारी बाढ़ में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। बढ़ते पानी के कारण फंसे लोगों को बचाने के लिए राहतकर्मी नौकाओं का इस्तेमाल कर रही हैं। इनमें इंडियाना पुलिस में व्हाइट रिवर के किनारे स्थित इलाकों में फंसे लोग भी शामिल हैं। इसके साथ समाचार समाप्त हुए, कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: कालीमाई गली कॉम्पेशेयर ग्रैंड रिवियर सुडेस्ट में 69 साल की 69-year-old श्री हरि प्रसाद जंगली, श्री हरि प्रसाद जंगली जो राज से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान कालीमाई गली कॉम्पेशेयर ग्रैंड रिवियर सुडेस्ट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए डेफ्रेयर की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फिनरल टुमोरो एट 11 AM। पेचित रिविया में 65 साल के 65-year-old श्री मुनेंद्रनाथ सिंह सोहन, श्री मुनेंद्रनाथ सिंह सोहन जो सुनील से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे लाशापेल औदौत मोगा पेचित रिविया से उठाकर दाह संस्कार के लिए कोडेगाउट की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी दिल हमदर्दी है।
2: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: Love you all, my dear listeners. हो चुका है 1:10. आज है संडे 16th of August 2026. आज आपका बर्थडे है, किसी क्लोज का बर्थडे है या फिर कोई ऐसे ही कुछ मना रहे हैं, कुछ इवेंट है या फिर ऐसे आराम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आपका स्वागत करते हैं RM Free Radio मनोरंजन पर। और घर पर हैं, गाड़ी में होंगे परिवार के साथ या संडे लंच के बाद आराम फरमा रहे हैं। आज संडे आफ्टरनून, लेजी आफ्टरनून वाला जो सुहाना सफ़र प्रोग्राम है आज, होप कि आप सब लोगों को हमारे जो गाने हैं पसंद आ रहे हैं। और आज का यह म्यूजिकल जॉनी आपके नाम है दोस्तों। अगर आप परवीन बाबी के फ़ैन हैं तो शायद आज उनके साथ आपकी भी कुछ पुरानी मेमोरीज जुड़ी होंगी। किसी फिल्म की याद, किसी गीत की याद, या शायद वो दौर ही याद आता होगा जब बॉलीवुड के गाने कैसेट और रेडियो पर घंटों सुना करते थे। अरे वो दिन भी क्या दिन थे। चलते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर, और ये जो गाना है कौन भूल सकता है, क्योंकि अगर परवीन बाबी की बात चली छेड़ी जाए तो बस ये गाना पहले दिमाग में आता है। जानते कौन सा गाना है? बस सस्पेंस सस्पेंस। और ये गाना जाएगा कल्याणी जी के लिए। ट्यूरे से हैं और कह रही हैं वहाँ पर धूप है मगर ठंडी हवा है। कल्याणी जी बस गानों का मज़ा भी लीजिए साथ में, और ये गाना सभी लिसनर्स के लिए। साथ में ये गाना जाएगा नमस्कार में, पूनम जी नहीं, पूनम बाद में आएगी 4 बजे। अभी के लिए मैं हूँ दीवीना और ये है माधुरी और परी के लिए। हाँ जी, कह रहे हैं हम आपके साथ साथ हैं, थैंक यू, शुक्रिया। और जितने लोग साथ दे रहे हैं थैंक यू। ये गाना परवीन बाबी की आवाज़ भी सुन आप सुनेंगे और साथ में आशा जी की आवाज़ में। बस शांत

चलिए इस गाने में हम नाम जोड़ते हैं. नमस्ते जी, ये है करुणा आलूबगन जी. हेलो करुणा, एक्चुअली वी आर हैविंग ग्रेट फैमिली टाइम. ओहो, कहाँ पर है ब्रदर प्रीतम और सिस्टर इन लॉ सिमी के यहाँ कानूट पिचित

हेमा, भाई रुपेश वेद, डॉटर इन लॉ भावना, किड्स रितिका, यजना, प्रीतिश, दर्शना और प्यारी सी प्रिंसेस रियाशी के लिए। सो बस ये गाना आपके लिए, करुणा जी एंड द होल फैमिली। शान से जियो तो शान से।

विश्वनी डुमन जी और वक्वा ये गाना ये गुमनाम वाला गाना नहीं चलाने वाले हैं बस ये गाना आपके लिए आई एम श्योर यू लव इट और ये बहन इंदिरा के लिए शारदा सहेली नीला प्रतिभा शुभा और गीता गजाधर के लिए

कविता जी मौची दा से आज का थीम है परवीन भाभी तो बस उन पर पिक्चराइज काफ़ी गाने हैं तो कविता जी कहते कह रही हैं आपका प्रोग्राम बहुत पसंद करती हूँ थैंक यू सो मच आपका साथ भी पसंद करते हैं बस कविता जी ये गाना आपके लिए एंजॉय इट लव यू

अमर अकबर एंटोनी इसमें नजर आए थे, बिग बी बच्चन साहब के साथ स्वीट परवीन बाबी, और बच्चन साहब के साथ काफ़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया, जैसे अमर अकबर एंटोनी, कालिया महान। और ये जो गाना है ना, हमको तुमसे हो गया है प्यार, किसको पसंद नहीं है। और ये जाएगा बाबू अनाटवा जी और आपके परिवार के लिए। साथ में हम यहाँ पर है माला जी, हाँ माला जी अपने जहाँ पर सभी कविश हैं, कनील, कबीर, किरण, सत्यम, शिव, और अगर किसी का नाम छूट गया है तो सॉरी, मगर उनका नाम हमेशा आता है के से, उनके जो सभी जो परिवार है, और बहुत नाइस है माला जी। सो आपके लिए ये गाना।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करे वाजिबा हम। दिमाग में आता है कैसे परवीन भाभी ठमक ठमक कर सुंदर सुंदर जो कपड़े उस वक्त के मॉडर्न लिबास में कितनी अच्छी लगती थी। और साथ में परवीन भाभी ने अपने करियर में कई बड़े सितारों के साथ काम किया, सुहाग, काला पत्थर, शान, नमक हलाल, कालिया, क्रांति। हर फिल्म में उनका अंदाज थोड़ा अलग, लेकिन उनकी पहचान हमेशा अपनी रही। कभी ग्लैमरस हीरोइन, कभी स्ट्रॉन्ग करेक्टर, कभी रोमांटिक अंदाज, और यही वर्सेटिलिटी उन्हें यादगार बनाती है। तो अब एक और म्यूजिकल ट्रीट, जानू मेरी जान मैं तेरी कुर्बान। हाँ जी, और ये गाना हो अमर अकबर अंटोनी से लिया गया है, और ये गाया जाएगा राधा बाल गोविंद जी के लिए मोचदा से, उनकी जो सहेली है शोभा के लिए, और घोंगुब की विमला के लिए। एंड ऑल्सो ये गाना हम डेडिकेट करते हैं
2: सारा हिंदुस्तान।
1: हाँ जी, संजय नलोबुगन का बर्थडे। तो अगला गाना नानी शामा की ओर से बहन यति यजना रीतिका की तरफ से। हाँ जी, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: ना सफर खाना सफर
1: जो रात बाकी है बात बाकी है वीकेंड भी बाकी है मेरे दोस्त अब शाम होने वाली है संडे का और संडे शाम को और कुछ होने वाला है आप कर सकते हैं चाय के टाइम पर कुछ गातू पीमा हो या फिर ठेकवा हो या कोई भी चीज़ आपको पसंद है इसके साथ भजिए हो तो बस टी टाइम होने वाला है तो एन्जॉय साथ में म्यूज़िक भी है वो चलता रहेगा 24/7 यहाँ पर हमेशा और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर और लोगों का साथ है हम अपनों का साथ होगा संडे आफ्टरनून को संडे इवनिंग को और कुछ स्ट्रेस भी होने वाला है क्योंकि कल सवेरे जो निकलना है ना नौकरी के लिए स्कूल के लिए बस फिक्र मत नो स्ट्रेस और वैसे हम बात कर रहे हैं परवीन बाबी को पर उन पर पिक्चराइज गाने हम चला रहे हैं और उनके गाने इतने मस्त हैं कि क्या कहें इतने गाने हैं लिस्ट में मगर आई एम श्योर चलाने का समय नहीं होगा क्योंकि 2 बजे के बाद हम चलाते हैं 90s वाले गाने और आज हमने सोचा क्यों ना और आपकी भी फरमाइश है कि हाँ क्यों ना आज हम आमिर खान साहब पर पिक्चराइज कुछ गाने चलाए हाँ जी आमिर खान साहब जो बॉलीवुड में 80s के दशक से हैं तो बस प्यारी प्यारी गाने हैं आपके लिए 2 बजे के बाद अभी के लिए कुछ और गाने हैं परवीन बाबी पर तो अब कुछ हद के हो जाए क्योंकि परवीन बाबी की बात करते करते ना किसी की याद आ गई क्योंकि वे भी उन्हें कहते हैं क्वीन ऑफ साउथ एशियन पॉप उनका जन्म हुआ था 3 अप्रैल को पर वे उनका निधन हो गया 13th of August यानी कि गत सप्ताह उनका मनाया था उनका डेथ एनिवर्सरी और पाकिस्तानी पॉप सिंगर थी आइकॉनिक मशहूर दक्षिण एशिया की एक मशहूर

और आइकॉनिक पाकिस्तानी पॉप सिंगर थी नाज़िया हसन। सो हमेशा उनकी याद आती हैं, हमेशा उनके गाने हम गाते रहते हैं, बजाते रहते हैं। तो शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में दो गाने, उन पर उनकी आवाज़ में फिल्म इस्तौका और साथ में है कुर्बानी। तो बस इसको एंजॉय कीजिए आप सभी के लिए।

हाँ आप साथ हो तो बस क्या चाहिए जिंदगी में, और साथ साथ जो रविवार का दिन है, संडे का दिन है, वो तो चलता रहेगा, और अपनों का साथ हो तो ब्यूटीफुल सा संडे आप सबों को मुबारक हो। बस थोड़ी देर में 2 बजने वाले हैं, समाचार पढ़े जाएंगे, इसके बाद 90s वाले जो गाने हैं हम इसकी ओर कदम बढ़ाएंगे, और वहाँ पर होगा कुछ स्पेशल गाने, और साथ में आमिर खान साहब पर पिक्चराइज कुछ गाने, और साथ में आपके कुछ पसंदीदा गाने। सो बस ये जो 2 घंटे हैं आपके साथ कैसे गुजर गया पता नहीं चला, एक और घंटा बाकी है मेरे दोस्त, आगे आगे देखिए होता है का। और इस ये जो अगला गाना है हम इसमें नाम जोड़ते हैं साजिद जी का और रोजिल, और साथ में साजिद जी ने इस गाने को डेडिकेट किया है सरोवर को, कनाडा में है सरोवर जी, हेलो। सो बस एंजॉय योर डे एंड एंजॉय दिस शो, और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर ओनली सुहाना सफर प्रोग्राम, फिर मिल

0: संक्षिप्त समाचार को सुनते हैं करुणा जी के साथ। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी को नमस्कार। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम आज दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां वे सादेक के 46वें सरकारी व राष्ट्र नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कल सोमवार को होगा और इसकी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा करेंगे। शिखर सम्मेलन से इतर डॉक्टर नवीन राम गुलाम की अन्य राष्ट्र नेताओं से मुलाकात भी निर्धारित है। इन बैठकों में साझा हितों से जुड़े मुद्दों और क्षेत्र की रणनीतिक प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी, खासकर खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर। मॉरिशस अवैध मछलीमार की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जहाजों की निगरानी और अधिक सख्त कर रहा है। मंत्री अरविंद बुलेल के अनुसार इस गतिविधि के कारण क्षेत्र में हर साल $5 बिलियन से अधिक का नुकसान होता है। इन नियमों का मकसद वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत करना है, जो मॉरिशस में 2005 से लागू हैं। विदेश में यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार रात भर रूस की ओर से किए गए हमलों में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है। दोनों देशों के बीच ड्रोन और मिसाइल हमलों का सिलसिला जारी है। यूक्रेन का कहना है कि उसने रूस की 3 मिसाइलों और करीब 100 ड्रोन को मार गिराया। रूस में ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्डबेरीज के एक और गोदाम को निशाना बनाया गया। इस कंपनी को अक्सर रूस का अमेज़न कहा जाता है। गवर्नर ने इसे शहर को निशाना बनाने वाले हाल के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक बताया है। और जाम्बिया में राष्ट्रपति चुनाव की निगरानी कर रहे अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने डराने, धमकाने और अपहरण की खबरों पर चिंता जताई है। मतदान केंद्रों पर हुई हिंसा के कारण मतगणना कई घंटों तक रोकनी पड़ी। कल यूरोपीय संघ और दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय सादेक

0: सहित विभिन्न पर्यवेक्षक मिशनों ने राजनीतिक दलों से भड़काऊ बयानबाजी से बचने की अपील की। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: कथ बोरोड बुनाकई में 77 साल की 77-year-old श्रीमती मुनिया दुखी, श्रीमती मुनिया दुखी पैदाइश नाम तूफानी जो हसवंती से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकी बेटी कविता दुखी के मकान कथ बोरोड बुनाकई से उठाकर दाह संस्कार के लिए लावाचुए की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। कांबोम्बाई लेन नंबर 3 वाकवा में 81 साल की 81-year-old श्रीमती शकुंतला गोपाल, श्रीमती शकुंतला गोपाल पैदाइश नाम तुकाराम जो आकामानु से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:15 इनके मकान कांबोम्बाई लेन नंबर 3 वाकवा से उठाकर दाह संस्कार के लिए ट्वामामेल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:15 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी दिल हमदर्दी है।
2: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
3: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
4: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
5: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

मुझे इस प्यारी सी आवाज़ को, उदित नारायण साहब की आवाज़ को सुनकर कौन दीवाना नहीं होगा, हम तो दीवाने हो ही गए हैं। और ऊपर से पिक्चराइज्ड ऑन आमिर खान, उसे कहते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट ऑफ बॉलीवुड। तो आज हमने सोचा क्यों ना आमिर खान साहब पर पिक्चराइज कुछ गाने हम पर चलाते हैं, साथ में आपके कुछ डेडिकेशंस और रिक्वेस्ट भी हैं। तो अभी आपने सुना फिल्म मन से लिया गया गाना, और मन मूवी में मनीषा कोइराला थी साथ में आमिर खान। और वैसे MBC और MFree रेडियो मनोरंजन पर हम साथ देने आए हैं सुहाना सफर प्रोग्राम लेकर, और हमारा और आपका साथ रहेगा 3 बजे तक। 12 बजे से आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच। और मैं हूँ देविना, संगीत की वो महफिल जहाँ हर धुन के साथ जुड़ी है एक याद, हर गीत के साथ जुड़ा है एक एहसास, और हर अंतरे में छुपी है खूबसूरत कहानी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफ़र के लिए जहाँ रास्ते 90s के हो, मंजिल यादों की हो, और साथी हैं वो सदाबहार गीत 90s वाले जिन्हें सुनकर आज भी दिल मुस्कुरा उठता है। वो गाने जिनको सुनकर हम बड़े हुए हैं, कुछ लोग जवान हुए हैं, कुछ लोगों का के साथ कोई था आज नहीं है, बस वो गाने। और 90s का ज़माना था ही कुछ ऐसा, फिल्में दिल में उतरती थी, गाने होठों पर चढ़ते थे, और प्यार चिट्ठियों में लिखा जाता था। तो चलिए शुरू हमने की इस गाने के साथ 90s स्पेशल, और शुरुआत हो जाए एक खूबसूरत रोमांटिक नगमे के साथ। और एक गाना है, मगर रोमांटिक गाने से पहले ये गाना आप सुनते जाइए, क्योंकि कल तो बैक टू स्कूल, सो सभी बच्चों जो हैं, बच्चे पार्टी जो हैं, स्टूडेंट्स लोग हैं, आप सबको बों को गाश, टीचर्स को भी। सो बच्चे लोग ध्यान से पढ़ना, और हमेशा मम्मी पापा का जो कहना है मानना, उनकी बातें सुनना, और ये गाना गाते जाना कयामत से कयामत तक। उदित नारायण साहब।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

बजकर 23 मिनट हुए हैं, संडे का दिन है, 16 अगस्त है। वाह क्या बात है, पहला प्यार, पहली मुलाकात, पहली धड़कन और उस पर 90s का कोई खूबसूरत गीत, बस समझिए कहानी पूरी। और 90s के गानों में एक अलग सी मासूमियत थी, न ज़्यादा दिखावा न ज़्यादा शोर, बस आँखों की भाषा पढ़ लिया, दिल की धड़कन और संगीत की मिठास। और अगर बात हो 90s के रोमांस किंग का, जैसे कहेंगे वैसे 90s में आते हैं शाहरुख खान का, जुलामीर खान, जूही चावला, माधुरी दीक्षित, सलमान खान, ये सब। अगर आज खास है आमिर खान साहब और उनकी शुरुआती दौर में उनके वो कितने छोटे छोटे से चुलबुल चुलबुली से, और फिल्म अंदाज अपना अपना हो या फिर दिल हो, जो जीता वही सिकंदर, मन तुम मेरे हो, और इसके बाद 2000 में आते आते दिल चाहता है, फन्नाह, इश्क और दंगल मूवी बाद में आई, ये सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। उनकी फिल्म पीके ये मूवी लोगों को बहुत पसंद आया और उन पर पिक्चराज गाने भी लोगों को बहुत पसंद आता था और आज भी लोग पसंद करते हैं। कौन भूल सकता है माधुरी दीक्षित और आमिर खान साहब। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। ये गाना हर किसी को जुबानी याद थी और आज भी हम शब्द शब्द, वर्ड एवरी वर्ड वी नो। और ये जो गाना है जाएगा खासतौर पर, सॉरी मैं अब आपका मैसेज पढ़ रही हूँ, अमृता जी, बस अमृता जी मोरालबिया की हैं, अनीता के लिए, अनीता हैं, करुणा, अमृता, वर्षा, सभी दोस्तों के लिए। और साथ में ये गाना हम पेश कर रहे हैं उन सबों के लिए जो प्यार में डूबे हैं, और जितने भी साल हो जाए आपके प्यार के, मगर प्यार को कभी कम न करने देना। तो बस प्यार में नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, तो हो जाए ये गाना। और आमिर खान साहब की बात हुई तो उनके गानों में हमेशा ज़्यादातर हम ये आवाज़ सुनते आ रहे हैं, उदित नारायण साहब, और साथ में होगी अनुराधा पौडवाल।

जहाँ तुम मेरे हो इस फिल्म में नजर आए थे आमिर खान साहब साथ में द ब्यूटीफुल जूही चावला। वैसे 90s की बात चली तो हमारे पास आज की तरह मोबाइल नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, लेकिन फिर भी प्यार की खबर पहुंच जाती थी। जब प्यार होता था ना तो कैसे पहुंचाए अपना मैसेज, कभी कोई सहेली, कभी कोई मित्र, कभी कोई कजिन, या फिर बस अपने आप चले जाते थे उनके पास प्यार का इजहार करने। छोटा सा खत, एक ग्रीटिंग कार्ड, एक कैसेट और रेडियो पर डेडिकेट किया हुआ कोई गीत। हाँ, उस वक्त डेडिकेशंस होते थे, लोग चिट्ठी भेजकर गीत मांगते थे। आज की तरह फ़ोन नहीं था, फिर भी कितनी मासूमियत थी, कितना जैसे वो जज्बात थे और जो प्यार था ना बिल्कुल सच्चा। वो दौर ही कुछ और था जहाँ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते थे, गानों को जिया जाता था। वी वर लिविंग द सॉन्ग। अगर आप भी 90s के फ़ैन हैं और आमिर खान साहब के फ़ैन हैं तो आज का सुहाना सफ़र बिल्कुल आपके नाम। और अब थोड़ा सा मूड बदलते हैं, बदलते नहीं हैं, बस प्यार में खो जाते हैं। और जो 90s वाला जो गाना है ना उसमें एक और गाना जोड़ देते हैं यहाँ पर, और ये आमिर खान साहब पर नहीं बल्कि श्रीदेवी द ब्यूटीफुल वन उस पर पिक्चराइज्ड, और साथ में फिरोज खान साहब। आपने पकड़ लिया होगा हम किस गीत के बारे में बात कर रहे हैं। ला ला ला ला ला ला, हाँ जी, जानबाज मूवी का गाना और इसकी मांग की है। हमेशा की तरह रोमांटिक मूड में आ जाते हैं हमारे हरीश बाबू और बुबासा हैं, सभी को कह रहे हैं हैप्पी संडे और साथ में उनके किसी खास के लिए।

हाँ, दिल भर का दिल भर का दिल भर का ये था हम है राही प्यार के। जूही चावला के साथ दिखे थे आमिर खान साहब और बच्चे पार्टी जो थे, और फिल्म कमाल की थी और सुपर हिट हुई, गाने भी सुपर हिट हुए। और कभी कभी कोई गीत सुनते ही अचानक कोई पुराना चेहरा याद आ जाता था, और ये गाना सुनकर ना मुझे क्या याद आए, बस कॉलेज वाले दिन जब हम कॉलेज जाते थे। अभी अभी आए थे कॉलेज में और बहुत कुछ पता नहीं था, और नए नए दोस्त बनाए थे, नई नई सहेलियाँ बनी थी, और घर पर कुछ ना कुछ तो सीख रहे थे। क्या मज़ा था उस 90s के ज़माने में। और कोई दोस्त, कोई स्कूल का साथी, कोई कॉलेज की याद, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आज दूर है लेकिन दिल के बहुत करीब है, यही तो संगीत की खूबसूरती है मेरे दोस्त। गीत जो है समय को रोक नहीं सकते, लेकिन गीत हमें वापस उस समय में ज़रूर ले जा सकते हैं। और 90s के ये गीत तो जैसे यादों की पूरी डायरी है। और जो अगला गाना जो है ना दोस्ती पर है, फिल्म दोस्ती पर थी, सैफ अली खान थे, आमिर खान थे, साथ में अक्षय खन्ना। गैस कीजिए को किस फिल्म की बात कर रहे हैं, आपको याद आए? सोचो प्रीति जिंटा थी, दीपक कपाड़िया थी, और अन्य कलाकार थे, गाने हिट हुए थे, फिल्म भी ज़्यादा जैसे मॉडर्न जो दोस्ती है ना उस पर था। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छी लगी ये फिल्म, और इस फिल्म के सभी गाने हमने गाए हैं इस लोगों के साथ, दोस्तों के साथ।

और एक ऐसा गाना जो पार्टी में भी गाया जाता था, अब भी गाए जाते हैं, और ये जो गाना है, अगला गाना जो है टाइटल सॉन्ग है, बस इसको एंजॉय कीजिए। और आप सुन रहे हैं और एम फ्री रेडियो मनोरंजन देवीना के साथ, और 10 बजे हैं, 10 मिनट है, सॉरी 10 मिनट है प्रोग्राम को ख़त्म करने का, तब तक ये गाना आप एंजॉय कीजिए।

जाओ दिल चाहता है मूवी का गाना आप सुन रहे हैं। तो आमिर खान साहब की बात करें तो कैसे भूलें राजा हिंदुस्तानी अर्थ, इसमें लगान, इसके लिए एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए ये उनको मिला था, साथ में नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म और साथ में दिल चाहता है के बाद इसके बाद आए फिल्म आई मंगल पांडे द राइजिंग, फना, रंग दे बसंती और कैसे भूले 2007 में तारे ज़मीन पर, क्या ड्रामा था, क्या फिल्म थी दर्शील सफारी के साथ। इसके बाद और जो फिल्म थी ना क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस बनी। इसके बाद उनको मिला था नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन फैमिली वेलफेयर। इसके बाद आमिर खान ने वे फिर से आए एंटी रिट्रोग्रेड एम्नेसिया, हाँ जी 2008 में फिल्म गजनी। इसके बाद आई कॉमेडी ड्रामा फ्री डेट्स और डोबी गाथ उन्होंने प्रोड्यूस किया था और उस समय उन्होंने ये होस्ट किया टेलीविजन टॉक शो सत्यमेव जयते। 2013 में धूम टीन, पीके इन 2014, इसके बाद जो है पीके दंगल हेल्ड रिकॉर्ड्स फॉर बीइंग द हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम। इसके बाद थग्स ऑफ हिंदुस्तान फॉरेस्ट गंप रीमेक है, लाल सिंह चड्ढा 2022 में और कमबैक किया 2025 में विद सितारे ज़मीन पर। तो बस हम

एक दो और गाने आपके नाम करने वाले हैं, तब तक बस इन्हीं खूबसूरत गीतों के साथ आज का सोना सफ़र को यही देते हैं प्यारा सा विराम। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। आप सभी का दिल से शुक्रिया कि आपने एक 3 घंटों के इस सफ़र में हमारा साथ दिया। मुस्कुराते रहिए, संगीत सुनते रहिए और याद रखिए कि ज़िंदगी का सफ़र चाहे कितना भी तेज़ क्यों ना हो, कभी कभी ठहर कर कोई पुराना गीत ज़रूर सुनिए, शायद उसमें आपका कोई खूबसूरत कल आज भी आपका इंतज़ार कर रहा हो। और बस यही कहना है, इसी दुआ के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और संगीत के साथ जुड़े रहिए। 3 बजे होगा ऐसा भी होता है और जयप्रताप सिंह के साथ गज़लें का प्रोग्राम जो है गज़लों का, वो 4 बजे, और इसके बाद हमारे जो अन्य प्रोग्राम है जारी रखेंगे। काम करते करते लेते लेते आप हमें सुनिएगा। फिर मिलते हैं। लव यू ऑल।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे।

0: सुनते हैं समाचार करुणा जी के साथ। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी को नमस्कार। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम आज दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां वे सादक के 46वें सरकारी व राष्ट्र नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कल सोमवार को होगा और इसकी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा करेंगे। शिखर सम्मेलन से अलग डॉक्टर नवीन राम गुलाम की अन्य राष्ट्र नेताओं से मुलाकात होगी, जिसके दौरान साझा हितों से जुड़े मुद्दों और क्षेत्र की रणनीतिक प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। नेशनल चिल्ड्रंस काउंसिल द्वारा आज रेजिडेंस वालीजी में एक नए चिल्ड्रंस क्लब का उद्घाटन किया गया। बच्चों के लिए सीखने, खेलने, विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए एक नया स्थान। मौके पर उपस्थित डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जेंडर इक्वालिटी मंत्री के लिए इस क्लब का मुख्य उद्देश्य बच्चों को ऐसा मंच उपलब्ध कराना है, जहां वे खुलकर अपनी बात रख सके, अपनी चिंताओं को साझा कर सके और अपनी आवाज बुलंद कर सके। मामी हवातुबांग मामले में कल एक और महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाई होने जा रही है। अक्टूबर 2025 से मेलगोज स्थित उच्च सुरक्षा वाली जेल में बंद मडागास्कर के कारोबारी मामी हवातुबांग को एक बार फिर बेल एंड रिमांड कोर्ट में पेश किया जाएगा। वो जमानत पर रिहाई की मांग कर रहे हैं, जबकि एफसीसी अब भी उनकी रिहाई का विरोध कर रहा है। इस मामले में महत्वपूर्ण मानी जा रही सुनवाई कल सोमवार को और मंगलवार को होगी। कल पुलिस के फोरेंसिक डॉक्टर सुदेश कुमार गंगादीन और डॉक्टर प्रेम चमन द्वारा किए गए पोस्टमार्टम से इसकी पुष्टि हुई कि अविनाश रामगोती की मौत फांसी लगाने के कारण दम घुटने से हुई है। 43 वर्षीय अविनाश रामगोती कल सुबह मेलगोज जेल में अपनी कोठरी में मृत पाए गए थे। और विदेश में यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार रात भर रूस की ओर से किए गए हमलों में कम 5 लोगों की मौत हुई है। दोनों देशों के बीच ड्रोन और मिसाइल हमलों का सिलसिला जारी है। यूक्रेन का कहना है कि उसने रूस की 3 मिसाइलों और करीब 100 ड्रोन को मार गिराया। मॉस्को के मेयर के अनुसार रात भर करीब 600 यूक्रेनी ड्रोन शहर की ओर भेजे गए। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: रॉयल रोड क्लेमेंसिया में 46 साल के 46-year-old श्री चंद्र दत्त पे अमा जो सचिन से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है।

0: आर्टिकल जिनके दस बजे इनके भाई मोहनलाल पैमा के मकान गुट रॉयल क्लेमेंसिया से उठाकर दाह संस्कार के लिए क्लेमेंसिया की ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM राकेट रोड ग्रांबे में 46 साल के 46-year-old श्री विशाल भरत, श्री विशाल भरत जो विमल से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 इनके भाई गाजन भरत के मकान राकेट रोड ग्रांबे से उठाकर दाह संस्कार अंतिम संस्कार के लिए काप मालोरे की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फिनरल टुमारो एट 11:30 AM सावन रोड नोवेल फ्रांस में 88 साल के 88-year-old श्री राम सुनकर सिंह रामदीन जो कि से जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:00 इनके मकान सावन रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर दाह संस्कार के लिए रामदीन नोवेल फ्रांस की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM रॉयल रोड पेटी राफ्रे में 65 साल की 65-year-old श्रीमती अनुराधा मुरोतिया जो संगीता से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 10:15 इनके भाई मनन मुरोतिया के मकान गुटवायार पेटी राफ्रे से उठाकर दाह संस्कार के लिए डाउची की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM शोकग्रस्त सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति।
1: RM2 Radio Musti Continuous music.

यहां पर कोई किसी का परवाह नहीं करता यहां पर सभी लोग स्वार्थी और मतलबी है ये दुनिया ही ऐसी है फिर लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है किससे शिकायत करे अगर दुनिया ऐसी है लोग ऐसे बदलते रहते हैं आज का इंसान इंसान ना रहा इंसान इंसानियत को भूल चुका है क्या सोचकर भगवान ने इंसान को धरती पर भेजा था और आज का इंसान धरती पर क्या मचा रहा है Ladies and gentlemen, guys and girls, इन्हीं सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे in your favorite program, साप्ताहिक कार्यक्रम जी हाँ और ये प्रोग्राम चलता है हर संडे की शाम को 3 से 4 बजे ये है ऐसा भी होता है अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम विद योर होस्ट एंड होस्ट और जय प्रताप सिंह ऑन 94.95 और 698.2 FM पर और इन फ्री रेडियो मनोरंजन कुछ ऐसी खबरें कुछ ऐसी न्यूज़ हम लाए हैं जो आपके होश के बाहर है आपकी समझ के बाहर है हमने खोज कार्य किया रिसर्च के जरिए ये प्रोग्राम हम तक पहुंचा रहे हैं ऑन MBC ऑन फ्री रेडियो मनोरंजन हियर वी गो

बहुत ही अजीब है ये दुनिया जैसे हमने आपको बताया और बहुत ही आजकल दर्दनाक घटनाएं घट रही हैं जी हाँ हाल ही में कोलंबिया में एक बहुत ही ज़बरदस्त जलजला आया जहां पर बहुत से लोगों की जान गई 10 अगस्त 2026 को आया 7.

4 तीव्रता का भूकंप बेहद विनाशकारी रहा। यह इस सदी में कोलंबिया में दर्ज सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया जाता है। भूकंप की मुख्य जानकारी इस तरह से है, 10 अगस्त 2026 को तीव्रता 7.4 ऑन रिश्टर स्केल और पश्चिमी कोलंबिया विशेषकर चोको प्रभावित मुख्य शहर है काली

किलोमीटर की दूरी पर है। 16 अगस्त तक उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार मृतकों की संख्या 290 तक पहुंच गई है और लगभग 3,935 लोग घायल हुए हैं और करीब 320 लोग लापता बताए जाते हैं। हजारों घरों में और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अस्पतालों, स्कूलों और अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं पर भी असर पड़ा है। भूकंप के बाद बचाव दलों ने मलबे में फंसे लोगों को खोजने के लिए लगातार काम किया। कई जगहों पर भारी मशीनों से मलबा हटाया गया। लगातार आने वाले आफ्टरशॉक्स बाद के झटकों ने राहत और बचाव कार्य को और कठिन बनाया है। एक महिला जिसका नाम है दानिला लार्गो लगभग 35 घंटे मलबे में रहने के बाद जीवित निकाली गई, लेकिन बाद में उनकी चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर भूकंप क्यों आया? यह प्राकृतिक टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण आया है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मुख्यतः स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग से जुड़ा था। इस प्रकार की हलचल में पृथ्वी के चट्टानों से बड़े हिस्से एक दूसरे के समंदर दिशा में खिसकते हैं। सोशल मीडिया पर इसे हार्प से जोड़ने वाली बातें भी फैली, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार हार्प का इस भूकंप से कोई संबंध नहीं है। विश्व बैंक ने तत्काल राहत और पुनर्वास के लिए $200 मिलियन उपलब्ध कराए। धन का उपयोग स्वास्थ्य, आवास और छोटे माध्यम व्यवसायों की सहायता में किया जाना है। और दुनिया भर से देश जो है कोलंबिया की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस है, यूएसए है, अमेरिका है, जर्मनी है, भारत भी जो है लोगों को भेज रहे हैं वहाँ पर मलबों के तले लोगों को निकालने के लिए। अभी ये आशा है कि कुछ जीवित लोगों को बचाया जा सकता है। सो ये पहली बार नहीं है दोस्तों कि कोलंबिया में ऐसा भूकंप आया। ऐसा भूकंप आता रहता है क्योंकि जो प्लेट टेक्टोनिक है, टेक्टोनिक प्लेट्स है, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। पर इस साल का ये बहुत ही ज़बरदस्त भूकंप रहा जिसमें कई लोगों की जान चली गई। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं क्योंकि आत्मा को शांति मिले। जो लोग इससे दुर्घटना में उन्होंने अपना जान खोया है और उनके परिवार के प्रति हम अपना सहानुभूति प्रकट करते हैं। हम तो रोज़ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे जो है प्राकृतिक विपदा किसी देश पर भी ना आए, क्योंकि जब भूकंप आता है तो लोग ज़मीन में अंदर चले जाते हैं, लोगों की जान चले, लोग घायल हो जाते हैं और चारों ओर सर्वनाश का दृश्य बन जाता है। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं दोस्तों, और क्या कर सकते हैं। परंतु प्राकृतिक जो नेचुरल क्लाइमिटी है उनके आगे इंसान बेबस है। आखिर इंसान करे तो क्या करे, ये सब भगवान का काम है।

शाम के 3:20 हो रहे हैं। यू आर लिसनिंग टू आरएमपी रेडियो मनोरंजन। संडे 16 अगस्त 2026 प्रोग्राम है, ऐसा भी होता है। अजय प्रताप सिंह के साथ शाम के 4 बजे, और आज हमारा आपका साथ रहेगा शाम के 5 बजे। 3 से 5 बजे तक हम आपका साथ देंगे ऑन आरएमपी रेडियो मनोरंजन। 4 बजे से होंगे लाइव टिकटॉक पेज पर फिल्मी गजलें। ये प्रोग्राम 4 से 5 बजे के बीच और अभी चल रहा है, ऐसा भी होता है। और दूसरी तरफ जानते हैं कि हम सभी पलंग पर क्या करते हैं। पलंग पर सोते हैं, आराम करते हैं, पर क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पलंग कहां पर है और क्या नाम है? जिस दुनिया का सबसे बड़ा पलंग नेदरलैंड्स के हेल्टन में नामक स्थान में बनाया गया था। इसे 28 मई 2011 को एक उत्सव के दौरान बनाया गया और इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। और इसकी लंबाई है 26.5 मीटर, चौड़ाई 16.44 मीटर। उसका क्षेत्रफल लगभग 435 वर्ग मीटर का है, जो 2 टेनिस कोर्ट के बराबर माना जा सकता है। इस विशाल पलंग का निर्माण कमिसिये जोमेर फेरस्टन सेंट ग्रेगोरियस हट में नामक संस्था ने किया है और इसे स्थानीय ग्रीष्म उत्सव समर फेस्टिवल के अवसर पर बनाया गया था। इस पलंग पर एक साथ दर्जनों लोग आराम से लेट सकते हैं और इसके लिए विशेष रूप से बहुत सारा गड्ढा और चादर बनाई गई थी। इसे बनाने के लिए मजबूत ढांचे और विशेष सामग्री का उपयोग किया गया था। यदि सामान्य उपयोग की बात करें

तो आज बाजार में मिलने वाला सबसे बड़ा बिस्तर अलास्कन किंग बेड माना जाता है। इसका आकार है 9 फीट और 9 फीट 108 × 108 इंच या बड़े परिवारों के लिए बनाया गया है। सो हमेशा याद रखिएगा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा पलंग जो है वो बनाया गया है नेदरलैंड्स में और उसका नाम है हटमे। जी हाँ, और यह सबसे बड़ा विशाल पलंग है जहाँ पर एक साथ दर्जन लोग सो सकते हैं, आराम फरमा सकते हैं। सो एक दिन अगर आपको मौका मिले तो जाइएगा नेदरलैंड्स और उस पलंग पर सोकर देखिएगा, आराम करके देखिएगा, बताइएगा कि कितना आराम पहुंचता है। हम जानते हैं बहुत से लोगों के साथ किंग साइज बेड है आपके घर में, बड़े बड़े घरों में, पर यह दुनिया का सबसे बड़ा बेड है। जी हाँ, और इस बेड पर एक साथ दर्जन लोग आराम कर सकते हैं। क्या बात है, लोगों के दिमाग में क्या चलता है, दूसरे लोग क्या से क्या बना बैठे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बिस्तर नेदरलैंड्स में।

जब हम नदियों की बात करते हैं तो मॉरिशस में सबसे बड़ी नदी का नाम है ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट, दूसरी नदी है रिवियर डू पोस्ट जहां हम रहते हैं मोतबा के पास। दुनिया भर में सबसे बड़ी रिवर नाइल, और अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक नदियों के बारे में। जी हाँ, दुनिया की खतरनाक नदियों में से एक नदी का नाम है कोंगो नदी। कोंगो नदी मध्य अफ्रीका में होकर बहती है और अंत में अटलांटिक महासागर में मिलती हैं। सब नदियां जो है सागर में मिलती हैं कि नहीं, और ये कोंगो नदी महासागर अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। इसका विशाल जल ग्रहण क्षेत्र कोंगो बेसिन और वर्षा वनों से जुड़ा है। कोंगो को दुनिया की सबसे गहरी दर्ज नदी माना जाता है। इसके कुछ हिस्सों में गहराई लगभग 220 मीटर यानी कि 720 फीट तक मापी गई है। निचली कोंगो नदी में कई अत्यंत शक्तिशाली रैपिड्स और जल प्रपात है। विशेष रूप से इंगा रैपिड्स इंगा फॉल्स क्षेत्र में पानी बहुत तेज गति और विशाल मात्रा में बहता है। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार यहाँ औसत प्रवाह लगभग 40,400 घन मीटर प्रति सेकंड दर्ज किया गया है। कोंगो की कुछ

धाराएं इतनी शक्तिशाली है कि सामान्य व्यक्ति के लिए उसमें तैरना अत्यंत जोखिम से भरा है। कनाडा सरकार की यात्रा सलाह भी कोंगो नदी और उसकी सहायक नदियों की स्पीड समेत तेज धाराओं के कारण तैरने को खतरनाक बताती है। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार इंगा रैपिड्स का लगभग 50 मील यानी कि 80 किमी लंबा क्षेत्र जल प्रभावों संभवरों और अत्यंत शक्तिशाली जल प्रभाव से बना है। 2011 में अनुभवी कायाकर्स की एक टीम ने इसे पार करने का पहला सफल डॉक्यूमेंटेड डिसेंट किया था। खतरे के मुख्य कारण है कोंगो नदी में बहुत तेज जलधारा है, अत्यधिक गहराई है, विशाल रैपिड और जल प्रभाव है, अचानक बनने वाले भंवर है, चट्टानी और संकरे नदी मार्ग है, कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और बदलता जल स्तर भी है। निष्कर्ष ये है कि यदि केवल नदी की प्राकृतिक शक्ति और रैपिड्स को आधार बनाया जाए तो कोंगो नदी दुनिया के सबसे खतरनाक नदियों में से एक मजबूत उम्मीदवार है। खासकर उसका लोअर कोंगो और इंगा रैपिड्स क्षेत्र बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है। सो दोस्तों, अब अगर क्विज में एक दिन आप क्विज करेंगे और कोई आपसे पूछेगा कि दुनिया का सबसे खतरनाक नदी का नाम क्या है, तो बेझिझक कह दीजिएगा कोंगो नदी, जो है इस दुनिया की सबसे खतरनाक नदियों में से एक है।

जब हम आवाज की दुनिया के बारे में बात करेंगे तो एक आवाज को हम कभी भुला ना पाएंगे, जहां ऐसा शख्स जो अपनी आवाज

से पहचानी जाती थी दुनिया भर में लोग उसे जानते वो चाहे बीबीसी रेडियो हो वॉइस ऑफ अमेरिका हो दूरदर्शन हो विविध भारती हो सेलन रेडियो हो आकाशवाणी हो जी हाँ हम बात करें द मल्टी टैलेंटेड अमीन सयानी के बारे में जी हाँ अमीन सयानी एक रेडियो स्पीकर थे एक वक्ता थे और भारत के सबसे प्रसिद्ध रेडियो प्रेजेंटर थे और उनकी आवाज़ में एक अजीब ही कशिश और जादू थी उन्हें विशेष रूप से बिना का गीतमाला कार्यक्रम की अपनी अनोखी आवाज़ और प्रस्तुत शैली के लिए याद किया जाता है उनका जन्म हुआ 21 दिसंबर 1932 मुंबई में उनके बड़े भाई हमीद सयानी भी रेडियो से जुड़े थे अमीन सयानी ने कम उम्र से ही रेडियो प्रसारण में रुचि विकसित की अमीन सयानी ने ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी से अपने प्रसारण कैरियर की शुरुआत की बाद में वे रेडियो सेलन से जुड़े और यहीं से उनकी आवाज़ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बेहद लोकप्रिय हुई उनकी प्रस्तुति में खास अंदाज था वे श्रोताओं से ऐसा संवाद करते थे जैसे वे उन्हें कई दिनों से जानते हो और उनकी सबसे प्रसिद्ध पहचान बिना का गीत माला थी यह लोकप्रिय फिल्मी गीतों की साप्ताहिक काउंटडाउन शैली का कार्यक्रम था इस कार्यक्रम के माध्यम से 1950 और उसके बाद तक के दर्शकों में हिंदी फिल्म संगीत की लोकप्रियता को घर घर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही और उनका प्रसिद्ध उद्योषणात्मक अंदाज बहनों और भाइयों जी हाँ ये उनका फेमस डायलॉग था और अमीन सयानी ने अपनी लंबी कैरियर में हजारों रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत किए और उनके भारतीय भाषाओं तथा श्रोताओं के बीच लोकप्रिय हुए उन्हें भारतीय रेडियो प्रसारण की महान आवाज़ों में से गिना जाता है और उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया इन 2009 अमीन सयानी का निधन हुआ 20 फरवरी 2024 को मुंबई में 91 ईयर्स की एज में उनके मृत्यु के बाद भारतीय रेडियो जगत में उन्हें युग निर्माता रेडियो प्रस्तुतकर्ता के रूप में याद किया जाता है उनकी खासियत ये है कि अमीन सयानी की आवाज़ में गर्म जोशी स्पष्ट उच्चारण उतार चढ़ाव और श्रोताओं से अपनापन था इसी कारण से वे केवल अधोषक नहीं रहे थे बल्कि कई पीढ़ियों के लिए रेडियो की पहचान बन गई संक्षेप में कह सकते हैं कि अमीन सयानी भारतीय रेडियो से के उन महान व्यक्तित्वों में से एक है जिन्हें रेडियो प्रस्तुति को एक कला का रूप दिया और हिंदी फिल्म संगीत को करोड़ों श्रोताओं तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अमीन सयानी की आवाज़ केवल रेडियो पर नहीं आती थी वो कई कमर्शियल ब्रेक जिसे पब्लिसिटी कहते हैं उसने पब्लिसिटी में भी काम किया और फिल्म जब कोई फिल्म रिलीज़ होने वाली थी तो उनकी आवाज़ को यूज़ किया गया और उनकी आवाज़ जो है दुनिया भर में प्रसिद्ध है यहाँ तक कि कहा जाता है कि क्वीन एलिजाबेथ जब जिंदा थी तो उन्हें जो है अमीन सयानी की आवाज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती थी और एक बार उन्हें क्वीन एलिजाबेथ ने अमीन सयानी को इंग्लैंड बुलाया और उसे बहुत सारे गिफ्ट्स और अवार्ड से नवाजा भी आज अमीन सयानी दुनिया में नहीं है पर उनकी आवाज़ हमेशा हमारे कानों में गूंजती रही उनका फेमस डायलॉग था भाइयों और बहनों

इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी। जो मांसाहारी है वो लोग गोश्त मछली ये सब खाते हैं और केंकड़ा भी खाते हैं, जिसे हम क्रैब कहते हैं। तो लोग केंकड़े की तरकारी बनाते हैं, केंकड़े का सूप बनाते हैं। पर क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ जहरीले केंकड़े भी हैं जिन्हें खाना नहीं चाहिए, अगर लोग खाते हैं तो लोगों की जान जा सकती है। भाई अब आप पूछ रहे कि ये केंकड़ा कहाँ पर है, सो इस केंकड़े का नाम है मोजाइक रीफ क्रैब और इसका वैज्ञानिक नाम है लुपोजुजिमस पिक्टोरा। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र के समुद्री इलाकों में पाया जाता है। इसे खतरनाक इसी माना जाता है क्योंकि इस केंकड़े के शरीर में अत्यंत शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन विशेषकर सक्सीटॉक्सिन जैसे विषैले पदार्थ पाए जाते हैं। ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। इसका जहर बहुत ही खतरनाक होता है। इसका विष मनुष्यों के लिए जानलेवा हो सकता है। विष शरीर में जाने पर गंभीर विषाक्तता हो सकती है। पकाने में भी इसे विषों को सुरक्षित मान लेना सही नहीं है, इसलिए जंगली या अनपहचाने केकड़े को कभी खाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुख्यतः यह केंकड़ा उष्णकटिबंधीय हिंद प्रशांत समुद्री क्षेत्रों में चट्टानी और प्रवाल भीति वाली वातावरण में पाया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के विषैले केंकड़ों को खाने योग्य केंकड़ों से केवल देखकर पहचाना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए स्थानीय विशेषज्ञों द्वारा सुरक्षित घोषित न की गई जंगली केंकड़े को नहीं खाना चाहिए। और बेशक यह जो केंकड़ा है बहुत विषैला है और इसका नाम हमने आपको बताया, इसका नाम है मोजाइक रीफ क्रैब और इसे वैज्ञानिक टर्म में कहते हैं लुपोजुजिमस पिक्टोर। सो केंकड़े खाने से पहले अच्छी तरह से देख लीजिए कि ये कैसा केंकड़ा है, कहीं केंकड़े खाने से जान न चली जाए।

आत्महत्या यानी कि सुसाइड ये सबसे बड़ा पाप है। ये एक ऐसा काम है जो किसी को कभी भी किसी हाल में नहीं करना चाहिए, पर अफसोस बहुत से लोग ये सुसाइड कर बैठते, अपनी जान खो देते हैं। सुसाइड का मतलब है अपने आप को मार डालना। और क्यों ऐसा लोग करते हैं? कभी कभी डिप्रेशन के कारण, कभी कभी जब हालात ठीक नहीं होते, इंसान अपना नौकरी खो देता है, या किसी ने किसी को छोड़कर चला गया है, चली गई, तो लोग प्यार के दर्द को सहन नहीं कर पाते और आत्महत्या कर देते हैं। दिस इज़ रियली वेरी बैड। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो लोग आत्महत्या करते हैं उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती है। और जब हम आत्महत्या के बारे में बात

0: करें तो हाल ही में घटना घटी थी यस जून 2026 में 35 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ईशा साहू जी हां ईशा साहू जो है उन्होंने छलांग मारकर अपनी जान दे दी और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और हैदराबाद के मियांपुर इलाके में रहती थी वे मूल रूप में से मध्य प्रदेश की थी घटना 12 जून 2026 को उनके अपार्टमेंट पर हुई उनकी 6 महीने की बच्ची भी उनके साथ थी ईशा की मृत्यु हो गई जबकि बच्ची बच गई और उसे अस्पताल में ले जाया गया रिपोर्टों के अनुसार बच्ची की चोटें आई थी लेकिन डॉक्टरों ने बाद में उसे खतरे से बाहर बताया पुलिस के अनुसार ईशा पिछले कुछ महीनों से नींद की गंभीर समस्या और मानसिक तनाव से गुजर रही थी कुछ रिपोर्टों में प्रसव के बाद अवसाद जैसे लक्षणों का भी उल्लेख किया गया लेकिन पुलिस ने यह स्पष्ट किया था कि घटना का अंतिम कारण जांच के बाद ही निर्धारित होगा पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी और परिवार तथा परिस्थितियों से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही थी एक महत्वपूर्ण बात नींद की कमी प्रसव के बाद होने वाले मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बदलाव और अत्यधिक तनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए ऐसी स्थिति में परिवार डॉक्टर या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से तुरंत सहायता लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर ऐसे जो है लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं और लोग आत्महत्या कर देते हैं तो जैसे कि हमने कहा कि आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है और गरुड़ पुराण में हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो शख्स ऐसा काम करता है वो शापित हो जाता है और भगवान उसे अपने यहाँ नहीं लेते हैं और उसकी आत्मा भटकती रहती है हमेशा हमेशा के लिए
1: मन का रेडियो बजने दे जरा

लेडीज एंड जेंटलमैन गाइस एंड गर्ल्स अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम है ऐसा भी होता है यहीं पर समाप्त होने जा रहा है होप यू एंजॉय द शो आपको बहुत सारी जानकारी मिली आपका जनरल नॉलेज जरूर बढ़ा होगा ठीक 4 बजे का फ्लैश न्यूज़ के बाद हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी फिल्मी गजलें प्रोग्राम में स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड सुनते रहिए प्रेम से एमबीसी ऑन एंड फ्री रेडियो मनोरंजन

0: सुनते समाचार अभी के साथ नमस्कार।
1: नमस्कार संजय, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कल से स्कूल फिर से शुरू हो रहे हैं। तीसरी तिमाही की शुरुआत के साथ ही रिवीजन और परीक्षाओं की तैयारियां तेजी पर होंगी। कुछ छात्रों विशेषकर राष्ट्रीय परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए स्कूल कैलेंडर का विस्तार किया जाएगा और ग्रेड 9 के छात्र अक्टूबर महीने में एनसी की परीक्षा देंगे। माध्यमिक स्तर की तैयारियों पर इस सप्ताह मंत्रालय के मुख्यालय पर चर्चा की गई, जिसमें कल से ही स्कूलों में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध प्रमुख विषय रहा। भारतीय उच्चायोग ने कल शाम थ्रियानो कन्वेंशन सेंटर में भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में गणराज्य के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम भी उपस्थित थे। भारतीय उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तव ने दोनों देशों के उस नेतृत्व पर बल लिया जो आपसी विश्वास

0: जो आपसी विश्वास सम्मेलन का उद्घाटन कल सोमवार को होगा और इसकी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा करेंगे। शिखर सम्मेलन से इतर डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम की अन्य राष्ट्र नेताओं से भी मुलाकात होने की भी संभावना है। इन बैठकों में साझा हितों से जुड़े मुद्दों और क्षेत्र के रणनीतिक प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। विदेश स्तर पर हम देखते हैं कि हंगरी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रही हैं। खबरों के अनुसार एक यात्री बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई, जिससे यह हादसा हुआ। उधर इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता के भूकंप में 51 लोगों की मौत हो गई और करीब 5,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों में पर पहुंचाया गया। 36 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 1300 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। राहत बचाव के लिए 3,500 से ज्यादा सैन्य और पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। 6 बजे आप विस्तार के साथ सायंकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे, तब तक अभी को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: गजल।
1: मेहरबान करदान साहिबान, आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं। आरएम फ्री रेडियो मनोरंजन की लहरों पे माइक पे हम हैं आपके होस्ट दोस्त अजय प्रताप सिंह। फिल्मी गजल जी हाँ, एक घंटे तक गजलों की दुनिया में आ जाइए। एक से एक प्यारी गजल हम लाए हैं केवल आप लोगों के लिए। रविवार की मस्तानी शाम है, प्यारी प्यारी आवाजें गूंजने जा रही है और हम फिर रेडियो मनोरंजन पर है। और शाम का वक्त है जिस महफिल में शमा है वहाँ परवाना भी जाएगा, और परवाना और शमा जब साथ मिल जाते हैं तो क्या बात होती है। सो चलते चलते सफ़र में आप हमारे हम सफ़र बन जाइए। अभी से 5 बजे तक आपको हमारा साथ देना है। चले तो कद ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता।

दोबारा की हैसियत से गई थी लेकिन एक और रास्ते पर चल पड़ी। मैंने अदाकारा की हैसियत से अपनी सलाहियतों को जाहिर किया। आज की नौजवान नस्ल से पहले के लोग जानते हैं कि मैंने फ़न के किन पहलुओं को दरियाफ्त किया। वक्ती तौर पर गाने का शौक दब गया। फ़न भी पानी के चश्मे की तरह होता है, ज़मीन के नीचे तो चला जाता है, अपनी ताकत से ऊपर उभर आ जाता है।

0: गजल फिल्मी गजल
1: आहिस्ता आहिस्ता सफर कठी जाता है और जब आप जैसे कदरदान हमारा साथ दे तो ये सफर कैसे न कटे। कहते हैं कि बड़ी नाजुक है ये मंजिल, बड़ी नाजुक है ये मंजिल, डरता है ये दिल कहीं मंजिल हमें मिले या ना मिले, बस आपका साथ मिल जाए बस यही काफ़ी है। और कितनी नाजुक है ये मंजिल, चलिए हम भी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कितनी नाजुक है इस मंजिल, ये मंजिल। मंजिल चाहे कितनी भी नाजुक हो, अगर आप जैसा कोई प्यार करने वाला, कोई चाहने वाला मिल जाए तो क्या बात है।

0: गजल, फिल्मी गजल।
1: हसीना जब इतनी खूबसूरत हो, हसीना जब इतनी खूबसूरत हो, तो कैसे कोई तारीफ न करे उसकी, उसकी प्यारी प्यारी आंखें और वो अदाएं और वो रेशमी जुल्फें, वो सागर जैसी आंखें जिन आंखों में डूब जाने को मन करता है, उनके रस भरे होंठ और बेशक एक नज़र अगर वो दे दे तो सभी घायल हो जाए। चांदी जैसा रंग है उसका, सोने जैसे बाल, जितनी भी तारीफ किया जाए उस हसीना की कम है। ए हसीना तुम ही बता दो तुम्हारा नाम क्या है, क्यों तुम्हें देखकर सभी तुम्हारे दीवाने हुए जा रहे हैं, तुम्हारे परवाने हुए जा रहे हैं।
2: दोस्तों आज मैं पहली बार गजल गायकी की दुनिया में एक नई चीज पेश कर रहा हूं, तज़मीन। जी हाँ, वही घुंघरू टूट गए, वही गायकी टूट गए लिखने वाले शायर जनाब खतिल शिफाई साहब की गजल के शेरों पर तज़मीन करके उसको गीत का रूप दिया है जाने पहचाने शायर।

एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तेरे चेहरे को देखा तो चांद नजर आया, और चांद को चांदनी पसंद है, मुझे तुम पसंद हो। और जब ये चांद चमकता है तो मुझे लगता है जैसे तुम मुस्कुरा रही हो, मुझे देख रही हो, मुझसे कह रही हो, हाँ हमें भी तुमसे मोहब्बत है, हमें भी तुमसे मोहब्बत है। चांद की कसम, चांदनी को चांद से मोहब्बत है।

गजल। कभी कभी उनकी यादों में आंखों से आंसू बह जाते हैं, कभी कभी उनकी यादों में आंसू बह जाते हैं, और ये आंसू बस यही दर्शाते हैं कि हम उनसे कितना मोहब्बत करते हैं। एक दिन अगर उसे ना देखे क्यों तो ये दिल टूट जाता है, बिखर जाता है। काश ऐसा मंजर हो जाए कि वो बस हमारी नज़रों के सामने रहे और रात दिन हम उनका दीदार करता रहे, हम उनका दीदार करता रहे, करते रहे करते रहे, इतना दीदार करे कि वो हमारे सामने आ जाए हमेशा हमेशा के लिए।

ये आंखें मिली है उसे देखने के लिए, ये आंखें मिली है उसे देखने के लिए, ये कान मिले हैं उसकी मीठी मीठी बातों को सुनने के लिए, और ये होंठ मिले हैं बस उसका नाम लेने के लिए। और जब वो मेरे पास नहीं होती है तो उदास हो जाता हूँ मैं। जब वो मेरे पास नहीं होती है तो उदास हो जाता हूँ मैं। मेरा दिल धक धक करता है, धक धक करता है उसकी याद में, कहीं मेरे दिल की धड़कन थम न जाए, कहीं मेरे दिल की धड़कन थम न जाए उसके इंतज़ार में। मेरा उदास मन बस उसी को चाहता है, मेरा उदास मन बस उसी का दीदार करता है।

मेहरबान कदरदान साहिबान साज और आवाज के हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों फिल्मी गजलें प्रोग्राम ही पर समाप्त होने जा रहा है। आशा करते हैं इन गजलों से आपका भरपूर मनोरंजन हुआ होगा। ठीक 5 बजे आप सुनेंगे अगला प्रोग्राम याद शीतल जी के साथ, उनका साथ जरूर दीजिएगा। हमारी आपकी मुलाकात यहीं तक थी, शाम के 3 बजे से अभी तक आपने हमारा साथ दिया, शुक्रिया करम मेहरबानी। हमारी आपकी मुलाकात होगी मंगलवार की रात्रि को रात के 9 बजे से 12 बजे तक रेडियो मोशस रेडियो मनोरंजन पर बहुत हुई तिरका प्रोग्राम में। कल से वापस स्कूल शुरू हो रही है, सो वेलकम बैक टू स्कूल। जी हाँ, कल से स्कूल हमारे स्टूडेंट्स और अध्यापक दोस्त कल से तीसरी तिमाही की पढ़ाई शुरू करेंगे। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। और जय प्रताप सिंह की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, नमस्ते।

0: listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: साया जो हर पल हमारे साथ रहता है, एक ऐसा समय भी आता है कि वो साया साथ छोड़ जाती है, पर जो हमेशा दामन पकड़े रहती है वो है यादें।
2: यादों के गलियों से गुजरते हुए एक बार फिर ले आए हैं कुछ खूबसूरत न भूलने वाले गाने, कुछ ऐसे गाने जिनसे हम अपने कभी दिल की कहानी तो कभी जिंदगी की कहानी सुना जाते हैं। एक दिल और 100 अफसाने, क्या है मोहब्बत, क्या है जवानी। रोमांटिक मूवी डायरेक्टेड बाय आरसी तलवार, जो कि आई थी 1963 में, एक दिल और 100 अफसाने, फीचरिंग द ग्रेट फिल्म मेकर राज कपूर साहब और द वेरी टैलेंटेड मेस्मराइजिंग वहीदा रहमान।

खूबसूरत एहसास मोहब्बत ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें। लता जी और मोहम्मद रफी की आवाज गूंजी जहां उन लोगों ने प्लेबैक दिया धर्मेंद्र और तनुजा के लिए। एक फिल्म आई थी 1968 में 1968 में इज्जत एक्शन

कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड। पुराने गीतों में खासियत ये थी कि आज भी ये गाने उतने ही प्यार से सुनते हैं जितना उस दौर में सुना करते थे। एक बेहद ही खूबसूरत दिल को छू देने वाला ये अल्फाज रहे। योगेश जी के सलील चौधरी ने इस गाने को बड़ी खूबसूरती से म्यूजिक कंपोजिशन दिया। फिल्म डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी। लीड रोल में द ग्रेट सुपरस्टार राजेश खन्ना मौजूद रहे। कहीं दूर जब दिल ढल जाए, रोमांटिक ड्रामा इमोशनल ड्रामा मूवी आनंद, जो कि आई थी 1971 में, सन 1971 में एक अमर आवाज गूंजी राजेश खन्ना के लिए मुकेश साहब के अनगिनत अवार्ड से इस फिल्म को नवाजा गया। अमिताभ बच्चन भी इस फिल्म में बतौर लीड एक्टर मौजूद रहे, लेकिन ये वो एक फिल्म रही जहां अमिताभ बच्चन को पहचान मिली।

शुरू का ये खूबसूरत सफर यादें पुराने गीतों में खास बात ये रहे उनकी ताजगी आज भी बने हुए हैं। शेयरिंग द फीलिंग ऑफ लव प्यार के खूबसूरत एहसास को इस हलचल को इस इशारे मोहब्बत को लता जी ने क्या खूब पेश किया। प्लेबैक उन्होंने दिया रति अग्निहोत्री के लिए। फिल्म आई थी 1985 में। रति के ऑपोजिट एक्टर रहे दीपक पराशर। एक बेहद ही काबिल म्यूजिक डायरेक्टर ने इस गाने को म्यूजिक कंपोजिशन दिया और वो रहे राजेश रोशन। 1985 की फिल्म बाबू ए हवा मेरे संग संग चल। खूबसूरत अल्फाज रहे मजरू सुल्तानपुरी।

वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे। सोलफुल वॉइसेस ऑफ द ड्यूएट मोहम्मद रफी और लता जी। हालांकि ये दोनों महान कलाकार आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन इनकी आवाज एक ऐसी आवाज है जो शायद ही इस संगीत की दुनिया से दूर हो पाएगी। सोलफुल क्लासिक वादा कर ले साजना फिल्म आई थी 1974 में। हाथ की सफाई, मोहम्मद रफी ने प्लेबैक दिया द ग्रेट कैरिस्मेटिक एक्टर विनोद खन्ना के लिए। हालांकि विनोद खन्ना आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उसके अदाकारी और उनके कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी से आज भी लोग प्रभावित होते हैं। उनके ऑपोजिट सिमी गरेवाल मौजूद रहे, अल्फाज रहे गुलशन बावरा की, म्यूजिक कंपोजर कल्याण जयानंद जी।

हर एक दौर की अपनी खासियत होती है और 1970-80 में दौर रहा आर डी बर्मन का। आर डी बर्मन अपने आप में एक अनोखे संगीतकार रहे जिनके म्यूजिक कंपोजिशन ने हर किसी को प्रभावित किया। आनंद बख्शी के लिखे हुए अल्फाज पर आर डी बर्मन ने संगीत दिया फिल्म रॉकी में। टाइमलेस मेमोरी बाय द डुओ किशोर कुमार और लता जी। एक्शन रोमांस मूवी फीचरिंग द अनफॉरगेटेबल डेब्यू ऑफ संजय दत्त, डायरेक्टेड बाय सुनील दत्त, अलोंगसाइड द वेरी मेस्मराइजिंग ब्यूटीफुल तीना मुनी।

भारतीय सिनेमा में अनेकों कलाकार आते हैं और परफॉर्म करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो जाने पर भी अपना एक गहरा छाप छोड़ जाते हैं। एक ऐसे कलाकार को हम इस गाने से याद कर रहे हैं, वो है धर्मेंद्र साहब। अनेकों फिल्मों के बीच 1973 में उन्होंने काम किया अपोजिट मुमताज फिल्म रही लोफर, मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, एवरग्रीन विंटेज मेलोडी बाय लता जी, म्यूजिक कंपोजिशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

रोमांटिक क्लासिक इकरारे मोहब्बत, सूथिंग म्यूजिक बाय द ग्रेट बप्पी लहरी साहब। इस गाने के खूबसूरत अल्फाज रहे शिव कुमार सरोज के, प्यार मांगा है तुम्हें से न इकरार करो। फिल्म आई थी 1978 में कॉलेज गर्ल। अपने आवाज को हर एक कैरेक्टर के लिए ढालना कोई किशोर कुमार से सीखे। उन्होंने गाया सचिन के लिए, रोमांटिक क्राइम थ्रिलर रही कॉलेज गर्ल, जो कि रही द रीमेक ऑफ द 1976 अमेरिकन फिल्म लिपस्टिक, प्रोड्यूस्ड बाय एस डी नारंग। सचिन के ऑपोजिट इस गाने में बिंदिया गोस्वामी मौजूद रही।

मोहब्बत वो खूबसूरत एहसास है कि कुछ भी अंजाम हो मोहब्बत की खता हो ही जाती है। सदाबहार गीतों के खूबसूरत आंचल से एक बहुत ही हसीन गाना पिक्चराइज और जितेंद्र एन मुश्मी चटर्जी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रहे। प्यासा सावन 1981 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। इस इमोशनल और न भूलने वाले गाने को लिखा संतोष आनंद ने, जहां उन्होंने जिंदगी की सच्चाई को बड़ी खासियत से पेश किया।

हर कलाकार की अपनी एक खासियत होती है और आज हमारे इस मंच पर एक ऐसे कलाकार पर पिक्चराइज हुआ गाना हम पेश कर रहे हैं जो शायद ही कभी हिंदी सिनेमा भूल पाएगी और वो रही स्मिता पाटिल। फिल्म शक्ति आई थी 1982 में। जाने कैसे कब और कहां इकरारे मोहब्बत हो गया। अ टाइमलेस रोमांटिक ड्यूएट जहां आर डी बर्मन के संगीत कंपोजिशन ने एक बार फिर इस गाने में कमाल कर दिखाया।

0: रविवार 16 अगस्त 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दक्षिण अफ्रीका का डर्बन शहर सोमवार से सैडेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह से है तैयार। इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस रविवार दोपहर को दक्षिण अफ्रीका के डर्बन शहर पहुंचे प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम, जहां खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे प्रमुख विषयों पर रहेगा ध्यान केंद्रित। कल से स्कूल फिर से शुरू हो रहे हैं। तीसरी तिमाही की शुरुआत के साथ ही रिवीजन और परीक्षाओं की तैयारी तेजी पर होगी। कुछ छात्रों, खासकर राष्ट्रीय परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए स्कूल कैलेंडर का विस्तार किया जाएगा। ग्रेड 9 के छात्र अक्टूबर महीने में नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन की परीक्षा देंगे। मामी गावातोमांगा मामले में कल से एक नई कानूनी लड़ाई शुरू हो रही है। अक्टूबर 2025 से मेलगोज की उच्च सुरक्षा वाली जेल में बंद मेडागास्कर के ये व्यापारी एक बार फिर बेल एंड रिमान कोर्ट के सामने पेश होंगे। और विदेश में इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता के भूकंप से 51 लोगों की मौत हो गई है और करीब 5,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि 36 लोग गंभीर रूप से हो गए हैं घायल। नमस्कार और आदाब। सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ और समाचारों को देती है विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल से शुरू हो रहे सैडेक के 46वें राष्ट्राध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस रविवार दोपहर को दक्षिण अफ्रीका के डर्बन शहर पर पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों से निपटने और क्षेत्रीय सहयोग को एक नई गति प्रदान करने के उद्देश्य से सैडेक के सभी 16 सदस्य देशों के नेता यहां एकत्र हुए हैं। अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर ज्यादा विस्तार करुणा लालू के साथ।
1: डर्बन के किंगशाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम का आधिकारिक और प्रोटोकॉल के तहत स्वागत किया गया। इस अवसर पर दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग की उपमंत्री ठंडी मोराका भी मौजूद थी। प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान राष्ट्र नेताओं के लिए निर्धारित औपचारिक प्रोटोकॉल का पालन किया गया। सैडेक का 46वां शिखर सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका कर रहा है, सोमवार को आधिकारिक रूप से शुरू होगा। क्षेत्रीय नेता क्षेत्रीय एकीकरण में तेजी लाने, बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि क्षेत्र में बदलाव तथा महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की क्षेत्र के अन्य नेताओं के साथ कई मुलाकातें भी होंगी। इन बैठकों में दक्षिण अफ्रीका के सामने मौजूद साझा चुनौतियों के साथ साथ सैडेक के भीतर मॉरिशस की प्राथमिकताओं को भी सामने रखने का अवसर मिलेगा। इस बीच आज रविवार रात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा द्वारा डर्बन ICC में आयोजित राजकीय भोज में शामिल होंगे। ये राजकीय भोज मॉरिशस के समयानुसार रात 9 बजे आयोजित किया जाएगा और इसमें सैडेक के सभी 16 सदस्य देशों के नेता हिस्सा लेंगे।
0: भारतीय उच्चायोग ने कल शाम थियानो कन्वेंशन सेंटर में भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में गणराज्य के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम भी उपस्थित थी। भारतीय उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तव ने दोनों देशों के उस नेतृत्व पर बल दिया जो आपसी विश्वास और समझ के उच्च स्तर का आनंद लेता है। उन्होंने शागस के समुद्री संरक्षित क्षेत्र के विकास और निगरानी से संबंधित नई रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ मॉरिशस के बंदरगाह के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन के महत्व को भी रेखांकित किया है। माधवी जगन्नाथ

0: रिपोर्ट पर विवरण अदिति अवतार का।
1: May I invite you to join me in a toast to the good health of Her Excellency, the President of India, and to the prosperity and happiness of the people of India.
2: इसके बाद भारतीय उच्चायुक्त श्री अनुराग श्रीवास्तव ने एक टोस्ट उठाया।
3: May I now invite you to join me in a toast to the good health of His Excellency, the President of Mauritius, to the continued progress and prosperity of the wonderful people of Mauritius, and to the enduring friendship and special ties between India and Mauritius.
2: अपने संदेश में उन्होंने चलाई जा रही सहयोग की विभिन्न पहलों का उल्लेख किया, जिसमें शागोस मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया के विकास और संचालन से जुड़ी हाल ही में स्थापित रणनीतिक साझेदारी शामिल है।
3: While our cooperation in coastal surveillance, EEZ monitoring,
2: उन्होंने कहा, तटीय सर्विलेंस, EEZ की मॉनिटरिंग, हाइड्रोग्राफी और समुद्री सुरक्षा जागरूकता को लेकर द्विपक्षीय सहयोग इस साल ज्यादा गहरा हुआ है, लेकिन ये साझेदारी जहाजों और क्षमताओं से कहीं आगे बढ़ के है। ये विकास नए सहयोग आयामों में दिखाई देता है, जो शागोस मरीन प्रोटेक्टेड एरिया के संचालन और उसकी निगरानी के लिए स्थापित हुआ है, और साथ ही मॉरिशस के बंदरगाह की विकास परियोजना भी इसका हिस्सा है। ये पहल एक ज्यादा सुरक्षित और कामयाब हिंद महासागरीय इलाके का हमारा विजन दर्शाती है। समारोह के अंतर्गत पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां हुई, जिससे उपस्थित मेहमानों को भारत की समृद्ध विरासत की झांकी मिली।

0: एक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें दर्शकों से भारत और मॉरिशस के बीच की खास साझेदारी प्रस्तुत की गई। ये माध्यम रहा दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग के संबंधों की समृद्धि और निरंतरता उजागर करने का।
1: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। मामी खावातो मांगा मामले में कल से एक नई कानूनी लड़ाई शुरू हो रही है। अक्टूबर 2025 से मेलरोज की उच्च सुरक्षा वाली जेल में बंद मेडागास्कर के ये व्यापारी एक बार फिर बेल एंड रिमांड कोर्ट के सामने पेश होंगे। वे अपनी जमानत याचिका दायर कर रहे हैं जबकि फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन उनकी जमानत का विरोध कर रहा है। कल और मंगलवार को होने वाली ये बहस इस मामले में निर्णायक मानी जा रही है। आइए इस मामले के मुख्य न्यायिक तथ्यों पर डालते हैं एक नजर। काविन तापिसाओ की रिपोर्ट पर करुणा लालू का विवरण।
2: मामी गावातुमांग अक्टूबर 2025 से मेलरोज की उच्च सुरक्षा वाली जेल में बंद हैं। 56 वर्षीय इस मेडागास्कर के कारोबारी को 24 अक्टूबर को फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने गिरफ्तार किया था। उस समय वो फिनिक्स स्थित एक निजी क्लिनिक में भर्ती थे। उन पर फिलहाल 3 अस्थायी आरोप हैं, मनी लॉन्डरिंग के 2 और आपराधिक साजिश का 1 आरोप। ये मामला एफसीसी की उस जांच से जुड़ा है जिसमें मेडागास्कर और मॉरिशस के बीच 7.3 बिलियन रुपए के वित्तीय लेन देन की भी जांच की जा रही है। उनकी संपत्तियों और उनकी कारोबारी गतिविधियों से जुड़ी कई कंपनियों की संपत्तियों पर भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रिमिनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया गया है। 31 अक्टूबर 2025 को मामी गावातुमांग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध वकील को मॉरिशस बुलाया। मॉरिशन वकीलों के साथ एक्टो बेनोडिनी ने एफसीसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। मामी गावातुमांग की जमानत के संबंध में पहली सुनवाई 30 दिसंबर 2025 को हुई, तब बेल एंड रिमांड कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। मजिस्ट्रेट ने मुख्य रूप से फरार होने, सबूतों से छेड़छाड़ करने और गवाहों को प्रभावित करने के खतरे को ध्यान में रखा। 30 जुलाई को मामी गावातुमांग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेल एंड रिमांड कोर्ट में पेशी दी। एफसीसी ने नई याचिका की स्वीकार्यता को लेकर अपनी प्रारंभिक आपत्ति वापस ले ली। इसके बाद अदालत के लिए अब उनकी जमानत याचिका पर गहरा

0: कठिनाई से जांच करने का रास्ता साफ हो गया है।
1: गुरुजी द्वारा अपनी पुस्तक स्वर्ण चैतन्य मराठी भजन संग्रह के माध्यम से 40 वर्षों की भक्ति और साधना का प्रसार किया गया है, जो मराठी भाषा में 750 भजनों का एक संकलन है। इस पुस्तक का औपचारिक विमोचन इस रविवार को मोका स्थित महाराष्ट्र भवन में मंत्री महेंद्र कुंदिया के और कई अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन द्वारा मॉरिशस मराठी कल्चरल सेंटर ट्रस्ट, मराठी स्पीकिंग यूनियन और फ्लक मराठी विघ्नेश्वर मंडली के सहयोग से किया गया था। शहजाद अली जुमन, अदिति अवतार।
2: भजन यानी ईश्वर की भक्ति में गाए जाने वाले गीत भक्तों का प्रेम और श्रद्धा दर्शाते हैं। इनकी जड़ें भक्ति में हैं, जो गीतों के माध्यम से श्रद्धालुओं को एक दूसरे से भी जोड़ती हैं। इस रविवार गुरुजी प्रेमदेव इतू सावंत के लिए एक भावुक पल रहा, जब उन्होंने अपनी पुस्तक स्वर्ण चैतन्य मराठी भजन संग्रह की लॉन्चिंग की, जिसमें मराठी भाषा के 750 भजनों का संकलन है। मराठी के पूर्व शिक्षक रहे गुरुजी के लिए ये किताब 40 से ज्यादा सालों तक भजन लिखने की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने अपने गुरु की सलाह पर ये संग्रह तैयार किया ताकि इस विरासत को सभी तक पहुंचाया जा सके। गुरुजी कहते हैं, मैं बहुत कम उम्र से लिखता और गाता हूँ। 2007 में मेरे स्वर्गीय आध्यात्मिक गुरु ने मुझे ये संग्रह बनाकर उसे एक पुस्तक का रूप देने को कहा। आज उनका सपना साकार हुआ है। इस पुस्तक में दुर्गा माँ, गणेश भगवान आदि सभी की भक्ति के भजन पाए जाते हैं। इस संग्रह में भजनों को रोमन लिपि में भी लिखा गया है। गुरुजी प्रेमदेव इतू सावंत हिंदी भजनों का भी संग्रह तैयार करने की योजना बना रहे हैं, ताकि उस परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके जो उनके दिल के बहुत करीब है।
1: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। सीखने, खेलने, गतिविधियों में भाग लेने और विशेष रूप से बच्चों की आवाज बुलंद करने की दिशा में एक नया स्थान, जी हां, नेशनल चिल्ड्रंस काउंसिल ने इस रविवार को रेजिडेंस वालेजी में एक नए चिल्ड्रंस क्लब का आयोजन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप प्रधानमंत्री और महिला अधिकार, जेंडर इक्वालिटी एवं परिवार कल्याण मंत्री आरिया नवामारी, नेशनल चिल्ड्रन काउंसिल के अध्यक्ष जिल्बिया लुइस और गणराज्य चीन के दूतावास व शुगर इंडस्ट्री वेलफेयर फंड के प्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित थे। समारोह के दौरान बच्चों को खेल उपकरण भी भेंट किए गए। और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि कल से स्कूल फिर से शुरू हो रही है, तीसरी तिमाही की शुरुआत के साथ ही रिविजन और परीक्षाओं की तैयारियाँ तेजी पर होंगी। कुछ छात्र, विशेषकर राष्ट्रीय परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए स्कूल कैलेंडर का विस्तार किया जाएगा और ग्रेड 9 के छात्र अक्टूबर महीने में नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन की परीक्षा देंगे। माध्यमिक स्तर की तैयारियों पर इस सप्ताह मंत्रालय के मुख्यालय में चर्चा की गई, जिसमें कल से ही स्कूलों में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध प्रमुख रूप से एक विषय रहा। हमारे यहां 2 सप्ताह बिताने के बाद जैकी नाम का समुद्री हाथी यानी कि एलिफेंट सील वापस समुद्र पर लौट गया लगता है। बुधवार के बाद से उसे फिर से नहीं देखा गया है, लेकिन उसने मॉरिशस वासियों के दिलों में अपनी बेहद खूबसूरत यादें छोड़ी हैं। वे कभी कभी हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, वेल, शार्क, कछुए, सील या फिर समुद्री पक्षी, लेकिन उनके ये रास्ते मानवीय गतिविधियों से बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन में 400 शोधकर्ताओं के शोध शामिल हैं, जिसमें मॉरिशन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन का शोध भी शामिल है। ये अध्ययन आज उनकी आवाजाही और प्रवास का एक अभूतपूर्व नक्शा यानी कि मैपिंग प्रस्तुत करता है, जिसका एक करा निष्कर्ष महासागरों के केवल

30% हिस्से को संरक्षित करना और उनके संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं भारत देश का लोकतंत्र

0: प्रतिबद्धता को याद दिलाते हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, राज्यसभा के उपसभापति और अन्य नेताओं ने सदैव अटल समृद्धि स्थल पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: उस महान हस्ती को नमन जिन्होंने भारत जैसे महान राष्ट्र के लिए अहम और ऐतिहासिक निर्णय लिए। भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर उनकी बरसी के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे महानुभाव जिन्होंने भारत की राजनीति पर गहरी छाप छोड़ी है। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सह संस्थापकों में शामिल थे। वे 9 बार लोकसभा चुनावों के लिए निर्वाचित हुए थे, यानी 50 से अधिक वर्षों तक वे सांसद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी वे प्रथम राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने कांग्रेस के सदस्य न होकर भी प्रधानमंत्री का पद संभाला था। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने और उनके कार्यकाल भारत के विकास और सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। 1998 में उनके तहत भारत ने परमाणु परीक्षण किया, जिससे भारत की प्रतिरक्षा क्षमता और मजबूत हुई। वाजपेयी जी ने देश के आर्थिक विकास, सड़क निर्माण और बुनियादी सुविधाओं को भी बढ़ावा दिया। अटल जी सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि एक महान कवि भी थे।
2: जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं, प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला, हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुष्टे दिए।
1: उनकी कविताओं में देशभक्ति, संघर्ष, आशा और जीवन के प्रति गहरी सोच देखने को मिलती है। भाषण देने की उनकी शैली बहुत प्रभावशाली थी। वे कठिन बातों को भी सरल और मुवस्सिर तरीके से व्यक्त करते थे। 1977 में वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र की 32वीं महासभा को हिंदी भाषा में संबोधित किया था और वसुधैव कुटुंबकम पर जोर दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता में विश्वास रखते थे। वे विपक्ष के विचारों का भी सम्मान करते थे। इसी वजह से अलग अलग विचारधाराओं के लोग भी उनकी प्रशंसा करते थे। उनकी विनम्रता, अच्छा व्यवहार और राजनीतिक सोच ने उन्हें एक अलग पहचान दी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके देश के प्रति योगदान के लिए सम्मान मिले। उन्हें 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनका निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जीवन में देश की सेवा, लोकतंत्र, साहित्य और राष्ट्र विकास को महत्व दिया। उनके विचार, कविताएं और देश के लिए किए गए कार्य हमेशा याद किए जाएंगे। वे भारत के इतिहास में एक महान और सम्मानित नेता के रूप में सदैव याद रहेंगे।
0: और जिस तरह से हमने इस बात की चर्चा की है कि कल से स्कूल फिर से शुरू हो रही है, तीसरी तिमाही की शुरुआत के साथ ही रिवीजन और परीक्षाओं की तैयारियां तेजी पर होंगी। कुछ छात्र विशेषकर राष्ट्रीय परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए स्कूल कैलेंडर का विस्तार किया जाएगा। ग्रेड 9 के छात्र अक्टूबर महीने में नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन की परीक्षा देंगे। माध्यमिक स्तर की तैयारियों पर इस सप्ताह मंत्रालय के मुख्यालय में चर्चा की गई, जिसमें कल से ही स्कूलों में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध प्रमुख विषय रहा। कुणाल गोजी की रिपोर्ट पर अदिति अवतार का विवरण।
3: माध्यमिक स्कूलों के स्तर पर तीसरा टर्म समय के साथ एक असली दौड़ जैसा होता है, जिसमें फाइनल रिवीजन और अंतिम परीक्षाएं होती हैं। इस साल कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए हैं। ग्रेड 9 के नेशनल सर्टिफिकेट एजुकेशन की परीक्षाएं सितंबर महीने के बजाय अक्टूबर में लगेंगी। शिक्षा मंत्री महेन गंगा प्रसाद कहते हैं, स्कूली कैलेंडर में परीक्षाएं आगे बढ़ाकर हम छात्रों को पाठ्यक्रम पूरा करने और शिक्षकों के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका दे रहे हैं। माध्यमिक के शिक्षक इस बदलाव का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि हर स्कूल के हालात अलग अलग होते हैं। यूनाइटेड डेप्यूटी रेक्टर्स एंड रेक्टर्स यूनियन के अध्यक्ष विकास रामधनी कहते हैं, कुछ छात्रों के साथ ज्यादा काम करने की आवश्यकता होती है। जबकि उच्च परफॉर्मेंस वालों के साथ अलग तरीके का काम होता है। इसके अलावा तीसरे टर्म में रिमीडियल क्लासेस भी होते हैं। ये सब

0: अवधि के दौरान ही किया जाता है। इस सोमवार से स्कूलों में नया टर्म शुरू होने के साथ नए नियमों पर चर्चा तेज की जा रही है। छात्रों को स्कूल में पहुंचते ही अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रखना होगा। साथ ही बुलिंग की समस्या के खिलाफ संघर्ष की दिशा में शिक्षकों के लिए जरूरी प्रशिक्षण शुरू होंगे। शिक्षा मंत्री कहते हैं, हम देख रहे हैं कि ड्रग्स और बुलिंग के खिलाफ स्कूली कर्मचारियों को किस प्रकार का प्रशिक्षण देना होगा ताकि वे इनका सामना कर सकें। साथ ही माध्यमिक स्कूलों में ड्रग्स से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल के सहयोग की मांग की गई है, जिसमें रोकथाम और छात्रों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाएगा।
1: सीखने, खेलने, गतिविधियों में भाग लेने और विशेष रूप से बच्चों की आवाज बुलंद करने के लिए एक नया स्थान, नेशनल चिल्ड्रंस काउंसिल ने इस रविवार को रेजिडेंस वालीजी में एक नए चिल्ड्रन क्लब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप प्रधानमंत्री आरियान नवामारी, नेशनल चिल्ड्रन काउंसिल के अध्यक्ष जिल्बे अल्वीज और गणराज्य चीन के दूतावास व शुगर इंडस्ट्री वेलफेयर फंड के प्रतिनिधि विशेष रूप से उपस्थित थे। संतना पौसेनो की रिपोर्ट पर विवरण करुणा लालू का।
2: रेजिडेंस वालीजी में बच्चों के लिए एक नया स्थान जहां वे एक दूसरे से मिल सकेंगे, सीख सकेंगे और अपनी प्रतिभाओं को विकसित कर सकेंगे। नेशनल चिल्ड्रंस काउंसिल ने रविवार को यहाँ एक नए चिल्ड्रंस क्लब का उद्घाटन किया। 7 से 17 साल की आयु के बच्चों के लिए निर्धारित इस क्लब में खेल, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियां की जाएंगी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आरियान नवामारी ने कहा, नेशनल चिल्ड्रंस काउंसिल के कई क्लब हैं देश भर में। आज कई बुराइयां हैं जिनसे बच्चों को खतरा है। क्लब में बच्चों को संगठित कर उनकी आवाज पर ध्यान देते हैं और उनके लिए मनोरंजन और खेल गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इस वास्ते चीनी दूतावास का भी समर्थन मिला है, जिसने क्लब के लिए खेल उपकरण प्रदान किए। नेशनल चिल्ड्रंस काउंसिल के साथ काम करने में प्रसन्नता हो रही है। बच्चों को यादगार पल देना चाहते हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान बच्चों ने कई गतिविधियों में भाग लिया, जिसमें फुटबॉल टूर्नामेंट भी शामिल रहा। अंततः बुजेकासी की टीम विजेता बनी, जिससे उसके युवा खिलाड़ियों में खुशी की लहर दौड़ गई। बहुत गर्व है, खेले गए पहले ही मैच में हमारी जीत हुई। 10 साल से काशी जूनियर क्लब में खेलता हूँ, अपने कोच को धन्यवाद है। चिल्ड्रंस क्लब की ये सिर्फ शुरुआत है। उद्देश्य रेजिडेंस वालीजी के युवाओं के लिए मुलाकात, विचारों के आदान प्रदान और सर्वांगीण विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनना है।
1: और विदेशी स्तर पर जो आज सुर्खियों में है, इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता के भूकंप से 51 लोगों की मौत हो गई है और करीब 5,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। 36 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि 1,300 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। राहत बचाव के लिए 3,500 से ज्यादा सैन्य और पुलिस कर्मी तैनात किए गए। उधर हंगरी में एक दर्दनाक सड़क का हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। खबरों के अनुसार एक यात्री बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई, जिससे ये हादसा हुआ। यूक्रेन ने रूस पर युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक को अंजाम दिया है। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि उसने रूसी रॉकेट सेंटर को निशाना बनाया है, साथ ही रूस की एक सैन्य हवाई पट्टी पर हमला किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार उन्होंने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए हैं, जिनमें से 600 का रुख राजधानी मॉस्को की तरफ था। इस हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। और अंत में मौसम का हाल।
2: पूर्व की ओर से आने वाले बादल हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे। अनुमान है कि आज रात के दौरान और कल सुबह भी आसमान में बादल घिरे

रहेंगे और रह रह कर बारिश होगी, खासकर पूर्व दक्षिण एवं सेंट्रल प्लाटू पर। ऊंचाइयों में कुछ इलाकों में कोहरे भी छाए रहेंगे। कल दिन के दौरान मौसम में सुधार आएगा। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाल रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 3.50 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है, साथ में दक्षिण पश्चिमी लगूनों में भी। सूर्यास्त 5:57 पर, कल सूर्योदय सुबह 6:30 बजे।

तो देश विदेश की नई खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही ये सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम लुडोविक को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।

अशोक समाचार सुनते हैं रारोद एक्वायो में, रारोद एक्वायो में जो लियो जिम के पास हैं, 47 साल के 47 years old के श्री विशाल राजकुमार, श्री विशाल राजकुमार जिन्हें सब लोग सचिन मासों के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के घर रारोद एक्वायो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ब्रह्मस्थान की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। रारोद क्लेमोसिया में 46 साल के 46 years old के श्री चंद्रदत्त पेमा जिन्हें सब लोग सचिन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके भाई श्री मोहनलाल पर्मा के घर रारोद क्लेमोसिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए क्लेमोसिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। रारोद पेचिराफ्रे में 65 साल की 65 years old की श्रीमती अनुराधा मुरुतिया जिन्हें सब लोग संगीता के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के सवा दस बजे उनके भाई श्री मानन मोरतिया के घर रारोद पेचिराफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो मॉर्निंग एट 10:15। थ्रेबोन नंबर तीन वाक्वा में 82 साल की 82 years old की श्रीमती नीराबाई गोपाल पैदाइशी नाम सकाराम और जिन्हें सब लोग नीराबाई के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे उन्हीं के घर थ्रेबोन नंबर तीन वाक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलेब्रियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। ऋषि दयानंद स्ट्रीट मोटिनिया सुरीनाम में 79 साल की 79 years old के श्री खुशीराम जादू जिन्हें सब लोग दुलम के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री विकास जादू के घर ऋषि दयानंद स्ट्रीट मोटिनिया सुरीनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। रारोद कैथ्रोकोको में 65 साल की 65 years old की श्री गुरुदेव राम नारायण जिन्हें सब लोग चनन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती इंद्रावती राम नारायण के घर रारोद कैथ्रोकोको से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी।

0: Mission tomorrow at 11 a.m. Calimay Road, Camp de Pêcheurs, Grand River, Grand River, Southeast Main. Calimay Road, Camp de Pêcheurs, Grand River, Southeast Main. 69 साल की 69 years old की श्री हरि प्रसाद जंगली, श्री हरि प्रसाद जंगली, जिन्हें सब लोग राजा और राज के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे, कल दिन के 11 बजे उन्हीं के घर कालीमाई रोड कौंदपेशिया ग्रैंड रिवर साउटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दिफ्रया की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 एएम। पेचित रिवियर में 65 साल के 65 इयर्स ओल्ड के श्री मुन्येंद्रनाथ सिंह सोहन, श्री मुन्येंद्रनाथ सिंह सोहन, जिन्हें सब लोग सुनील के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे, कल दिन के 11 बजे ला शापेल ऑन दे मुगा पेचित रिवियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोडेगा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 एएम। सावन रोड नोवेल फ्रांस में, सावन रोड नोवेल फ्रांस में 88 साल के years old के श्री रामशंकर सिंह रामदीन, जिन्हें सब लोग जोके के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के घर सवन रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रामदीन नोवेल फ्रांस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 एएम। रैकेट रोड ग्रांड बे में 46 साल के 46 years old के श्री विशाल भगत, जिन्हें सब लोग विमल के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े ग्यारह बजे उनके भाई श्री गैसों भगत के घर रैकेट रोड ग्रांड बे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कपमालेगे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमारो एट 11:30 AM। रॉयल रोड मिलरोज में 62 साल के 62 years old के श्री राजकुमार सोमारू, जिन्हें सब लोग विनोद के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके बेटे श्री हशील सोमारू के घर रॉयल रोड मेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। और एडीसी बेलोम में 57 साल के 57 years old के श्री संताराम सबाजी, जिन्हें सब लोग गासों के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी ताबूत कल दिन के डेढ़ बजे उनके भाई श्री रविंद्र सबाजी के घर एडीसी बेलोम से निकालकर सबसे पहले प्रार्थना सभा के लिए बेजिकाप स्थित सेंट फ्रांसवा दाजीज का गिरजाघर ले जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए सैमोंटे बेलोम का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुमारो एट 1:30 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: NBC Radio 24 hours a day.

सीबी की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति सुनिए। मोसेलमो ओरेया और आसपास के इलाकों के ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि इस बुधवार 19 अगस्त 2026 को प्रातःकाल के 9 से लेकर शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। ग्राहकों को यह भी सूचित किया जाता है कि मरम्मत कार्य के समाप्ते ही बिना कोई पूर्व सूचना बिजली की आपूर्ति फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के

0: लिए से भी मौसमा हो गया कि सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं। सो ये थी एक विज्ञप्ति सीबी की ओर से।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

नहीं सो। नमस्कार श्रोताओ, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ और एम फ्री रेडियो, और आप सुन रहे हैं नई सोच प्रोग्राम। और इस कार्यक्रम में साथ देने के लिए मैं उषा कौर यहाँ पर। दोस्तों, 7 बजे तक ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, और ऐसे कुछ गीत गाने हैं जो भाव गीत है आपके नाम। जी हाँ, जिंदगी हर दिन हमें एक नया मौका देती है, कुछ नया सोचने का, कुछ नया सीखने का और ख़ुद को कल से बेहतर बनाने का। इसलिए अपने दिल में एक नई सोच, एक नई उम्मीद और एक नई रोशनी लेकर आगे बढ़े और साथ देने के लिए इस खूबसूरत रेडियो सफ़र में बहुत बहुत धन्यवाद।

जय दोस्तों, जिंदगी चाहे सुर बदल दे, हम अपनी आवाज नहीं बदलेंगे, गाते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और हर पल को यादगार बनाते रहेंगे। जी हाँ, और इसी गीत के साथ ये कार्यक्रम नई सोच यहीं पर समाप्त हो चला। आपने साथ दिया धन्यवाद, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे दिलों की आवाज़ प्रोग्राम।

0: राहों पे रहने वाला ये मुसाफिर गेरूलाल सफर करते करते एक बार दूर दराज के पहाड़ों में जाकर रुक गया। एक छोटा सा गांव था और उस गांव में टूटा फूटा सा एक घर जहां चार औरतों का एक अधूरा सा परिवार रहता था। अम्मा थी 60 से ऊपर की, कुछ सठियाई हुई सी कुछ बहकी हुई, अपने आप ही से बातें करती रहती थी। और उसकी तीन बेटियां निमकी मिट्ठू और चिंकी। शादी किसी की नहीं हो पाई। लोग कहते हैं मां बाप के छींटे ना पड़े होते तो तीनों ब्याही जाती। देखने में भी तो आखिर अच्छी खासी हैं। बड़ी शादी की उम्र से गुजर चुकी है और छोटी लड़कों की तरह रास्तों में ठुड्डे मारती चलती है। शादी की उम्र को बस पहुंची कि अब पहुंची। और मंझली बेचारी गूंगी है, गेरूलाल ने अक्सर उसे गुनगुनाते सुना है। बहनें कहती हैं कि वो गीत लिखा करती है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: दिलों की आवाज,
1: जय दोस्तों, 7 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज प्रोग्राम। और इस कार्यक्रम में साथ देने के लिए मैं उषा कौर यहां पर, जी हां, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आरएम फ्री रेडियो पर, रेडियो मनोरंजन, जी हां। और ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात के 9 बजे, जी हां। आज रविवार 16 अगस्त 2026 और काफ़ी लोग इस समय हमें सुन रहे हैं, जो लोग घर पर हैं, डिनर कर रहे हैं या फिर खाना तैयार कर रहे हैं, या कुछ लोग बाहर जा रहे हैं, गाड़ी में है इस समय, तो अब हम आपको कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी दिल की बात कहने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं, बस एक खामोशी होती है, एक एहसास होता है और दिल सब कुछ कह देता है। और यहाँ पर गानों के ज़रिए हम आगे बढ़ेंगे और आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 1-402-807-0402-8070 और मैसेजेस आप कर सकते हैं 1-525-06200। हमें आपका इंतज़ार है 80s और 90s के खूबसूरत पॉपुलर गाने। दिल का क्या कसूर, जी हाँ, फिल्म का नाम है, आवाज़ें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: दिल है छोटा सा छोटी सी आशा जी हाँ दोस्तों आशा और उम्मीद जिंदगी के वो दो दिए हैं जो अंधेरी रात में वही रोशनी का एहसास देते हैं कभी रास्ते मुश्किल हो जाते हैं कभी वक्त हमारा साथ नहीं देता लेकिन एक छोटी सी उम्मीद दिल को फिर से संभाल लेती है इसलिए उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए क्योंकि हो सकता है जिस सुबह का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो आपके बिल्कुल करीब हो तो चलिए आज की शाम हम जारी रखते हैं आशा उम्मीद और खूबसूरत एहसासों के साथ अगला गाना जाएगा जी हाँ आज की पहली फरमाइश और गाना खास कर ललिता जी के लिए जो हमें सुन रही हैं फ्रॉम कालबास गाना उनके लिए और उनके सभी प्यारे छोटे छोटे बच्चों के लिए

जी हाँ दोस्तों, आज रविवार है और रविवार का दिन जो होता है कुछ लोग किसी के लिए आराम का दिन होता है, किसी के लिए अपनों के साथ मिलने जुलने का बहाना, कहीं दोस्त साथ बैठे हैं, कहीं परिवार के साथ हंसी मजाक और छोटी सी पार्टी चल रही है। आखिर खुशियां तभी तो खूबसूरत लगती है जब उन्हें बांटने वाले अपने साथ हो। तो जो लोग आज अपनों के साथ है, इस पल को दिल से जिए, और जो दूर है उन्हें एक प्यारा सा पैगाम ज़रूर भेजें। रविवार को यादों, मुस्कुराहट और जो है ना अपनों के नाम

कर दीजिए। चलिए अगला गाना पृथ्वी जी के लिए जो इस समय अपने फैमिली के साथ है और वो डिनर कर रहे हैं, क्या बात है, शुभारहार आपको और आपके परिवार को। गाना जाएगा आपके नाम और आपके परिवार के लिए, और साथ ही साथ में गाना हम चलाएंगे इंद्राणी जी के लिए जो हमें सुन रही है फ्रॉम क्यूपिप। चलिए ये गाना उन सभी लोगों के लिए जो इस समय पार्टी कर रहे हैं।

0: RM3 Radio. Radio. Radio. दिलों की आवाज़, की आवाज़, दिलों की आवाज़।
1: जस दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कोई अचानक आ जाता है और पता ही नहीं चलता कि वो एक इंसान है या जिंदगी का एक खूबसूरत मोड़। उनकी बातों से चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, उनकी मौजूदगी से हमारे दिल को सुकून मिलता है और धीरे धीरे वो अजनबी अपना सा लगने लगता है और शायद इसी का नाम है ज़िंदगी। कुछ लोग बिना दस्तक दिए आते हैं और दिल में एक खूबसूरत कहानी छोड़ जाते हैं। और यहाँ पर बहुत ही प्यारा गाना यस बॉस फिल्म से लिया गया, खासकर ये गाना सुदेवी जी की मांग पर, वो रहती है वाकवा और गाना खासकर वो मांग रही है दीदी ललिता कुशल फैमिली, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना मालेंगा के केशनी, कृषय, प्रणीता, राम रतन परिवार के लिए। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में

0: दिलों की आवाज़ की आवाज़ दिलों की आवाज़।
1: चलिए दिलों की आवाज़ प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं। 7:50 हुए हैं। बहुत ही प्यारी फिल्म प्यार प्यार से लिया गया अगला गाना, जी हाँ, एक तेरे ही चेहरे पे। क्या लिखा है इस चेहरे पर। दिलों की आवाज़ प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आरएम फ्री रेडियो, रेडियो मनोरंजन। और ये कार्यक्रम खासकर आप लोगों के नाम मैसेजेस आप भेज रहे हैं ऑन 5250620052506200। बहुत धन्यवाद जो लोग साथ दे रहे हैं। और अगला गाना जो है, जी हाँ, प्यार प्यार फिल्म से लिया गया निशाल के लिए। और ये है, आप हैं फ्रॉम सूरज सजादा जी। जी हाँ, आपके आपका गाना हम चलाएंगे खासकर बेटा निशाल, बीसेस ऑफ फैमिली, नीतूषा के लिए और हमारे सभी मनोरंजन टीम के लिए भी।

प्यारे दोस्तों, चार हफ्तों की छुट्टी के बाद कल फिर स्कूल की रौनक लौटेगी, है ना। बच्चों की हंसी, दोस्तों की बातें और टीचर्स की प्यारी डांट, नए हौसले, नई उम्मीद और नए सपनों के साथ सभी स्टूडेंट और टीचर्स का स्कूल में फिर से स्वागत रहेगा। और अगला गाना खासकर स्वर्णल के लिए, जो इस समय हमें सुन रही हैं, गाना वो मांग रही हैं फ्रॉम फिल्म सर, और सभी स्टूडेंट और टीचर्स के लिए, और गाना जाएगा उनके सभी कॉलीग्स के लिए, एसएसएस पीटो बॉयज और भाष्रावण जो चाइना जा रहे हैं आज रात को, तो उनको बुन वायाज, ढेर सारा प्यार उनकी प्यारी पत्नी कीर्ति, अभिनव, कियान, नव्या और तिलक फैमिली की ओर से।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: जी हाँ, दिलों की आवाज़ प्रोग्राम खासकर आप लोगों के नाम। और आपको पता ही है कभी कभी हम लाइव टिकटॉक भी करते हैं, अभी हमने कर दिया है। अगर आप लोग देखना भी चाहते हैं सो यू कैन फॉलो आवर पेज RM Free Radio, रेडियो मनोरंजन। और यहाँ पर अगला गाना हम चलाएंगे खासकर गुलशन के लिए जो हमें सुन रहे हैं। गाना खासकर एंजल, आयशा, मामा प्रभा और दीदी दीक्षिता और सभी भोला फैमिली के लिए। और साथ में युवना आयशा माधुरी जी जो हमें देख रहे हैं इस समय, तिलक कुमार जी आपके नाम गाया जाएगा गाना, करुणा राम, अनिमाक्स और आप है फीना पिले, केविन जग्स आपके नाम, संजय बुधवा और साथ ही साथ में शमीम जुमन जी हाँ, और दिनेश गोपी, आशीष कुमार, माया रामदोस जो कल जिन्होंने कल अपना जन्मदिन मना लिया है, और यश जो है अपनी नानी माया धनु के लिए गाना मांग रही है, नीन, सुनीर अग्रवाल, किरण के लिए भी और साथ में एंजल है। द बॉस आपके लिए भी गाना हम चलाएंगे, दिलवंती सनातन गाना आपके लिए और आपकी दादी के लिए। और यहाँ पर मिस्टर राकेश है जी हाँ, डॉक्टर यश जिंगरी, चलिए आप इस सिलेक्शंस को खूब एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बिस्वानी जुमन आपके नाम भी गाना जाएगा, अमृत विधातो की आपके लिए, चलिए बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाज़ों में। राजेश आपके नाम और बेबी जेन आपके लिए भी और आपके फैमिली के लिए अगला गाना, वीमी आपके नाम।

0: दिलों की आवाज
1: आज बजकर 27 मिनट हुए हैं और यहां पर गाना हम चलाएंगे देविका किस नामा आपके लिए. आप गाना मांग रही हैं अपनी माता जी के लिए, आज उनका जन्मदिन है. सो ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद उनको और प्यारा अंशु के लिए जो मेरा बेटा है अभी समय हमें देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं. थैंक्स टू यू. और पूजा फाउडर जिन्होंने हमारा प्लेलिस्ट बहुत एंजॉय किया है, थैंक यू. राजेश आपके लिए और हमारे जय साहब आपके नाम गाना जाएगा. मिशेल खान आपके लिए भी. और आश जो है गाना मांग रही हैं विक्षा और विदिशा के नाम. और खतिबा मोगो गाना मांग रही हैं अपने जीजाजी के लिए, आज उनका जन्मदिन है. सो ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद. रोशन आपके लिए, बेबी जेन. और साथ में दीपक जो हमें सुन रही हैं फ्रॉम क्यूपिप और गाना वो मांग रहे हैं अपनी बेटी जो रहती है फ्रांस में, तो चलिए उनका नाम हम जोड़ लेते हैं. राकेश राजेश जुटन आपके लिए. विहन कुमारी नमस्ते. बीरेश बाबू आपके लिए भी गाना जाएगा. और जी हाँ, कतिबा मोगो अपने जीजाजी का नाम है नदीम सदीम, तो चलिए सदीम के लिए गाना, उनको हम जन्मदिन के मुबारकबाद देते हैं. हलकुरी प्रकाश जुलू वेनिता और साथ में है

मुलजिम का ये खूबसूरत गीत एंजॉय कीजिए और साथ में फिकॉन्फ्लॉक के रहने वाली अनीता जी गाना मांग रही है पतिराज बेटा अंतिश अंकुश बहुमनीषा आशिमा पोती है हिमेशा और आदिया पोते जो है अंश और हमारे सभी रेडियो मनोरंजन टीम के लिए और जितने लोग आज जन्मदिन मना रहे हैं सो वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे पूरे एमबीसी टीम की ओर से

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: चलिए गाना जाएगा अगला गीत याशले के लिए जो हमें देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, मालिनी आपके लिए और साथ में शैलिंदर गिल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और आवी जो है निशा गाना मांग रही है पति, उनके पति के लिए, पति के लिए, जी हाँ आपके पति के लिए। और बेटा यश, नितिश रॉय, कृष्णा, युधिष्ठिर और साथ में गाना जाएगा परिणीता वैष्णवी और पूरे जो मंगो फैमिली के लिए जो रहती हैं गोका।

0: यू और साथ में यहाँ पर शेन केनेडी वसंती नमस्ते आपको और आप है आहाना ओजायब नमस्कार सुचिता भागीरथी आप रहती है लंदन थैंक्स फॉर थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग और यहाँ पर मिशेल वंदना वंडू जी हाँ गाना वो मांग रही है करिश्मा सिराम और हमारे प्यारे निसार मियाँ के लिए धन्यवाद थैंक यू सो मच निसार फॉर लिसनिंग केशनी फ्रॉम इटली योगिता नमस्ते आपको
1: आह बेलिसिमो
0: और रेखा रामा हेलो टू यू और केशनी जो है अगला गाना मांग रही है हमारे सभी लिसनर्स के लिए

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: जी हाँ, कभी कभी आपके जिंदगी में कोई आ जाता है जो आपको मुस्कुराने की वजह फिर से दे देते हैं, है ना। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, जगजीत सिंह की प्यारी गजल, खासकर अंतिश सिचन के लिए, और साथ में मुकेश कुमार साहब, आपको हम डेडिकेट कर रहे हैं अगला गाना। और जय जो है गाना मांग रहे हैं अंजू के लिए, उनकी प्यारी पत्नी साम के नाम। और रोमिता गुजा, आपके लिए भी गाना हम चलाएंगे। और साथ में है अजबर्ड फ्रॉम डर्बन, गाना खासकर वो मांग रहे हैं। एंड सिंग हाय टू टीचर प्रकाश तुरल ऑफ फिनिक्स। और रोमिता गुजा जो है गाना मांग रही है परिवार के लिए, दशरथ परिवार और गुजा परिवार। और साथ में अंजू एंड सागुना।

जो है गाना वो मांग रही है हस्बैंड नितिन और बेटा नीरव के लिए, और आप हैं धनी जगरू जी फ्रॉम गुडलैंड्स, शिरिन रामजोन के लिए आपके लिए भी गाना जाएगा, आशा के लिए, जी हाँ, करिश्मा हेलो टू यू,

0: RM3 Radio. Radio.
1: चलिए इसी के साथ आज का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हो चला. आपने साथ दिया, बहुत धन्यवाद. ऐसे ही हमेशा साथ दीजिए इस खूबसूरत सफर में जिन्होंने साथ दिया है. थैंक यू सो मच. हमेशा ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए. और गाना खासकर चलिए आपका नाम हम ले लेते हैं, भाई दिलशाद, उनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू हिम. और ज्योति लोबिन फ्रॉम मॉरिशस, थैंक यू सो मच.

और साथ में हैं तपन कुमार चौधरी आपके लिए भी थैंक यू सो मच चलिए इसी के साथ मैं उषा कौर यहाँ पर आप लोगों से विदा लेती हूँ मिलते हैं बहुत जल्द तब तक आप अपना ख्याल रखिए बाय बाय टेक केयर शुभ रात्रि

0: भोजपुरी तड़का
1: रात के 9:14 हो गए बाद छोटा लोग नमस्कार आप सबको भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में तो लोग के हृदय से स्वागत बाते रेडियो के तर दीवाना हुआ जा त हम संगीत के मस्तानी है त चला दीवाना मस्ताना हो के संगे ई प्रोग्राम के अंत रहब जा रात के 11 बजे ले और पहल का गाना सुना जा और उषा कौर तो हर संगे यहाँ पर ही अगर कोई मनपसंद गीत तो लोग खातिर हम चलावब जा और यहाँ पर ही किशोर खिमिया के गावल गीत जलसा लालबा

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 9:28 हो गए बा। श्रोता लोग, हमार प्यारे भाई बहन लोगन कबो अपन के अकेला नहीं समझिया। अगर परिवार साथ नहीं देवत हवन तोहर सच्चा परिवार है जा। बाते जोन 2407 तोहर सेवा में लेगल लगल रहेला। और तोहर दोस्त है MBC रेडियो। MBC के अर्थ है माय बेस्ट कंपेनियन, है ना। तो चल अगला गीत संगीता जी खातिर जोन रहेला कठो बोन और बखत अपनी के सुनाता। और गाना खास कर बेटा अश्विन और बेटी रीना के नाम।

बत्ती से धुआं निकलने लगी तो तेल डालने से क्या होगा। जब असर के भूत सर से उतर गया तो अरे गुनी बुलाने से क्या होगा। जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा। अरे गंदे पानी पीकर

अरे रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
2: साथी लोगन हमेशा बोलीला कि तनाव बहुत खतरनाक है तनाव से तोरे नहीं बुझाई कि कैसन बीमारी धर लेलक तनाव के दूर भगावा संगीत और खेल कूद में रुचि बढ़ावा जीवन में खुशी के रंग भर जाए रात के 9:50 होने को है अगला गीत तो चला भोजपुरी बाजा बाजे बॉयज के गावल गीत ये गाना रॉय के लिए जो इस समय जो ही बखत हमने के सुना था कटोबोन से और गाना मांगा तवंजा मामा प्रीति खातिर और संगे इंदिरा जी जो हमने के सुना था मेबर्ग से धन्यवाद साथ देने खातिर ये गाना तो हर नाम

भोजपुरी तड़का तड़का रात के 10:06 हो गल बा छोटा लोग जिंदगी जोन हता एगो रहस्या है एकर अर्थ कौन ची है कोई के पता नहीं चलेला अर्थ ढूंढते ढूंढते जिंदगी खत्म हो जाला पर जवाब नहीं मिलेला ए खातिर बोलल जाला चार दिन के जीवन में जी भर के जीला जा समय नहीं बाते जकान अहंकार और नफरत करे के तो चल अगला गीत सुना नो यन के गावल गीत खाले पीले जिले भैया जिंदगी में कहबा और ये गाना रोहित जी खाते जो हमने के सुनाता वो बास है और जितना कोई के वक्त काम करता लोपिताल में स्टेशन ला पुलिस में और ये जो लोग गाड़ी चलावता तो सावधानी से

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
2: रात के 10:26 हो गए बा संगत या लोगन थोड़ी देर के लिए सोचा कि भोजपुरी तड़का अब नहीं चली तो हर रात्रि कैसे गुजरी है हम तो ये कबू नहीं सकब सोचा कि ऐसा बात हुई भोजपुरी तड़का किया आप लोगन के जिंदगी में बाहर आने के ला तो हर रात्रि ये सुहाना हो तो चला इस समा के और रंगीत करब जा सुनीतानंद को के गावल गीत और ये गाना पृथ्वीराज खातिर जोन हमने के सुनता मॉडल बेया से गाना एकर खातिर एकर परिवार पत्नी रीना खातिर और पूरे रघुनाथ परिवार खातिर

0: भोजपुरी तड़का तड़का
1: ढगल ऐली

श्रोता लोगानी कार्यक्रम समाप्त होए के बाद तोहर से आज्ञा चाहत है हमेशा अपन ख्याल रखिया और ही सभी से प्रेम से पेश आया जा नमस्ते और शुभ रात्रि।

सुनो बस तू ऐसे काम पड़ल वहां।

0: हैं अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनीशा का प्रणाम। सारे म्यूजिक लवर्स का हम बड़े प्यार से फिर से एक बार स्वागत करना चाहेंगे सुनहरे पल में रेडियो मॉरिशस पर। बिल्कुल दोस्तों, जहां पे हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे गाने। वैसे जिंदगी की किताब में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ साथ पुराने ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो खुशबू होती है ना, कभी कम नहीं होती है। कुछ लम्हे, कुछ रिश्ते, कुछ मुस्कुराहटें और कुछ गीत जो दिल के किसी कोने में आज भी वैसे ही महफूज हैं जैसे पहली बार महसूस किए थे आपने। तो चलिए जी, अगला नगमा खासकर आपके लिए इस खूबसूरत से सुनहरे पल का शो की शुरुआत करने के लिए।

आज की इस खूबसूरत महफिल में हम फिर से वही यादें ताज़ा करेंगे जब रेडियो घर का सबसे प्यारा साथी हुआ करता था, जब पूरा परिवार साथ बैठकर गीतों का लुफ्त उठाते थे, जब संडे की शाम चाय की प्याली के साथ मोहम्मद रफ़ी जी और लता मंगेशकर, मुकेश दा, किशोर कुमार जी और आशा भोंसले की मधुर आवाज़ें हर घर में गूंजती थी। आज हम चाहते हैं कि उसी दौर को आप फिर से दोबारा जी लें हमारे साथ रेडियो मॉरिशस पर।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरी पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

पुराने गीत सिर्फ असुर और संगीत नहीं होते हैं, ये हमारे जिंदगी के बहुत ही अहम सुविनियर्स होते हैं। यादों के वो अनमोल तोहफे, वो हमें हर बार एक नई सफर पर ले जाते हैं। कभी बचपन की गलियां और कभी पहली मोहब्बत का एहसास, कभी माँ के आंचल की ममता में, तो कभी दोस्तों के साथ बिताए उन बेपरवाह दिनों में। जी हाँ दोस्तों, गानों के अंदर कुछ ऐसे ताकत होते हैं, कुछ ऐसे पावर होते हैं जो हमें खींच के उसी दौर में वापस लेकर जाते हैं। तो चलिए जी, आराम से बैठ जाइए, अगला गाना आपके नाम।

0: जग जगले दिल जुबा।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। ये पर्दा

0: हटा दो।
1: वेल मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, उम्मीद करते हैं कि हर एक गाने को आप दिल से महसूस कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि इस खूबसूरत सी रात को अपनी सारी फिक्रों को थोड़ी देर के लिए एक तरफ आप कर दीजिए, अपने साथ थोड़ा सा वक्त बिता दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और दिल को तैयार कर लीजिए एक हसीन म्यूजिकल सफ़र के लिए, जो स्पेशली हम रात के 11 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच में आपको लेकर जाते हैं यादों की सफ़र पर।

हम हैं आपके प्यारे से दोस्त आज की निशा जो आपका साथ दे रहे हैं और आप सुन रहे हैं सुनहरे पल सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर जहां हर गीत सुर सुना नहीं जाता महसूस किए जाते हैं जहां हर धुन एक कहानी सुनाती है और हर कहानी हमें उन सुनहरे पलों तक जरूर लेकर जाती है जो जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं तो चलिए यादों का ये हसीन सफर खासकर

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: रेडियो की दुनिया का वो हसीन दौर, ग्रामोफोन से कैसेट तक और कैसेट से डिल तक, आज फिर से उसी सफर पर चलते हैं। ये निशा बड़े शिद्दत से आपका साथ दे रहे हैं और आप सुन रहे हैं सुनहरे पर, सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर, जहां हर गीत एक याद है, हर याद एक मुस्कान बन जाती है और हर मुस्कान जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा होता है। तो चलिए जो उम्मीद करते हैं कि अगला गाना आपके दिल को भा जाएगा और आपको गुनगुनाने पर मजबूर करेगा। तो चलिए, ये रहा आपके नाम।

फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, जाने का वक्त हो गया है मेरे दोस्त, लेकिन वापस जरूर आएंगे, वादा रहा आपसे। शुभ रात्रि, शब बखैर, हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स को बस ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं।

सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा, आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

बात का जवाब हाथ से, बात का जवाब बात से, प्रीत का जवाब प्रीत से, और गीत का जवाब गीत से।